कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 मिनट हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2026 जून महीने का गुरुवार दिन और तारीख है 18। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता दीनयोग। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ, भक्ति और सुरों भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट। 6:40 सुनिए गालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आपातानी दैनिक न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज। पेश है सदाबहार सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब

और कांगो का मैच एक एक से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है, भक्ति गीत।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे कालो श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: जी आकाशवाणी ईटानगर ईटानगर दमरोगाम लुए पोलोगे लोरी गोला पीने नान गए मैं तो आरोप गालो मिंकिन आगुमे मिंजी दून मिंकिन आगुमे मिलने जी दून गो जुमतो लम्ब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मरो फ्रांस के इवियन सिटी लोकर दून G7 समिट लोकर प्रमोटिंग बैलेंस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एन एम थीम ग अगर एम मिंजी दूला नर्म मोदी में डेवलपिंग कंट्री का जगह इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ एम पुर्द मोनाम लगाब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गादम ने आल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोकरी रब गाम लगाब मेन्तु ओके अफ्रीका लैटिन अमेरिका ओके पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज गद लगाब चिन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एम रब गाम लगाब मेन्दुला नर्म मोदी मु G7 कंट्री गाद मूर्को इंडिया के वर्कर ओके डेवलपिंग कंट्रीज गादम ने मिलाई दूला निमा ओपेन कंट्री एम कादुम तादुम नाम लगाब इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड अगर एम रेप गाम लगाब मेन्तु लोदुम आलो लो G7 नेशन ग मेंबर पार्टनर कंट्री इंटरनेशनल मॉनिटरी पान ग मेंबर ओके ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का द हालिकु डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउनामे मरो असम गवर्नमेंट ग पंचायती राज एंड RD एक्साइज बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर अतुल बोरा ओके असम अरुणाचल एक्साइज डिपार्टमेंट लोक बुते बोते गादम ने कबा गो दूल गतु दुकुम आलोलो अरुणाचल ओके आसाम स्टेट आनी ए मिलाई दूला बिजनेस परिपोता रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओके रूल एंड रेगुलेशन अबा एम पुर्दी मोदूला स्टेट गुम इन सोइन ओके स्टेट आनी गेगो दुगो एम रकेन बरे नाम लगा बे लोदुम गतु नेपको परे हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख ए तालनी दो अचिरुब होदूला डेम लोक इजी एम कादूला मोको के गुमिन सोइन ओके स्टेक होल्डर्स गादम ने डेम ग इजी तोपाक नाम ग लगी लगा लो पब्लिक एडवाइजरी एम जिलेन तु डेप्यूटी जनरल मैनेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन ईआर तबा गागुंग मु निदो कोदे अचीव होदाक लो डेम लोक इजी ए बोरी देनाम एम कादूला PRI मेंबर कंसर्न अथॉरिटी ओके लोकल नि गादम ने डेम रिजर्वियर दोको लोक दुलुक ने ओके परे जीबू लोक डाउन स्ट्रीम लो दूलिग ने ओके पावर हाउस नेची लो दूने गद्दम ने डिपार्टमेंट ग एडवाइजरी जिले नाम मेंगो जिनाम लगावे मेंतु ओके हार ने समय लो निदो को दे तीते बो होदाक लो डेम रिजर्वियर दो को लो ओके डाउन स्ट्रीम एरिया लो रनिंग माधव मेंतु विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पपुम परे गद्द डिस्ट्रिक्ट लोक क्लास 10 ओके क्लास 12 टॉपर्स लोक आउनिजिन गद्दम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आरालो DC कॉन्फ्रेंस हॉल UPL लो आमन एम जिलेक्तु लोदुम आलो लो DC पपुम परे DC लोपसांग सेरिंग परिपोता एम डिग्री आरो बे पामो मावे होमियाओ गद्दम ने स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओके आजिनापुक एम परिपोता अगर लोक चेंकोक पाकोक मोनाम लगाबे मेन्तु हेदु लनर मु सेरिंग मु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एम ने भारत गुदा सरकार गा अत्यारु बेरगे नाम सोशल कैंपेन गोबे रेदुने एला मेन्तु तानेगत नुनु मेंकेन आगुमम आकाशवाणी तानेगत लोक तपादु अरुणाचल ग अक्के स्काउट मास्टर कातम गाओ यज्ञिया दोन जुमदो आंगु तायक मुबांग ताजे मारा ओक संजय चिंते मुन्नम हिमालय हुद बेच कोर्स एम नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पंचामारी मध्य प्रदेश लोरिंगाम तु हिमालय हुद बेच स्कॉट मास्टर गादिग लगाब अत्यारू ने क्वालिफिकेशन गोबे रिदूला जकने अगर लो स्कूल लोक स्कॉट गादम ने मुन्नम रितम मेंतम एमरिमोदू ने अला मेंकेन जितु डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च गादे मुनुगे अरुणाचल लो परिपोता कल्चरल ओके रेगो दुगो लगाब निरिकानी गोला निंगोना ने आनी आरालो मुनुगे दिंची पर रिनाम लगाब केनलो गाले आलो लो प्लेटिनम जुबली एम लोदुम गतु लोदुम आलो लो डिपार्टमेंट गादे मुनुगे 75 इयर्स आनी आरालो के स्टेट लगाब रिनाम एम कातम दुला प्लेटिनम जुबली लोगो डिजाइन कॉम्पिटिशन एम लोचिन लोदुम गतु तिराब ग डेप्यूटी कमिश्नर तेचू आरान केनलो गालू आलोलो 1,22,000 रुपीज डोनेशन मुर्को एम मिशनरी ऑफ चैरिटी कुंसा एम जिलेक्तु डोनेशन मुर्को एम तिराब डिस्ट्रिक्ट ग हेड ऑफ डिपार्टमेंट गादम निमा होपेन एम कागुर ने चैरिटी मिशन लगावे हुरकुम दूला जिलेक्तु।

गुड मॉर्निंग ईटानगर गालो दालेक में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से ताजा तरीन खबर। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक नई ताजगी, एक नई उम्मीद और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू और इस खूबसूरत सुबह का हम सफर मैं लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम और सेहत से बड़ा प्रोग्राम सुबह सवेरे। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी खाया, यानी अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा में जब पहाड़ों पर धुंध हल्की हो रही हो तब बिस्तर से उठने का मजा ही कुछ और है। लेकिन सच सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले किस किसने अपना मोबाइल चेक किया, व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग मैसेजेस देखने से पहले अपनी बॉडी को एक बार गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है दोस्तों।

आज के इस शो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बिजी लाइफ को थोड़ा और हेल्दी बना सकते हैं। हम बात करेंगे हमारी सदियों पुरानी परंपरा यानी योगा के बारे में, थोड़ी मजेदार एक्सरसाइजेस की बातें होंगी और ढेर सारी काम के हेल्थ टिप्स भी मिलेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद हसीन और खूबसूरत गीत के साथ। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर सुबह सवेरे, आपके अपने दोस्त और होस्ट याजू के साथ। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं तो एक शब्द हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है और वो है योगा। लेकिन क्या आपको पता है कि योगा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पिछले कुछ सालों में अचानक से फेमस हो गई। इसका इतिहास बेहद गौरवशाली और हजारों साल पुराना है। हमारे देश भारत में लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी योगा के सबूत मिले हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेदा और उपनिषद में इसका गहरा जिक्र किया है। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में एक बहुत सुंदर बात कही है, स्थिरा सुकम आसना, यानी जो आसान आसन आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी और सुख दे, वही असली योगा है। योगा का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं होता। योगा शब्द संस्कृत के युज से भाषा है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, यानी आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल का साथ एक साथ जुड़ जाना। अगर आपने कभी योगा नहीं किया है तो डरना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटी और आसान होनी चाहिए। आज से ही आप ये तीन चीजें शुरू कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। सुबह उठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा और दिमाग से सारे स्ट्रेस को धूल की तरह उड़ा देगा। वृक्षासना

ये आपकी फोकस के लिए होता है। अगर आपका दिमाग भटकता है या घर में बच्चों का काम में मन नहीं लगता तो एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाना सीखिए। ये आपके नर्वस सिस्टम को कूल करता है और फोकस बढ़ाता है। अगला है बालासना, जो कि इंस्टेंट रिलीफ देता है। दिन भर की बागडोर से अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है तो बालासना कीजिए, इससे स्पाइनल कोर्ट को बहुत आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात, योगा हमेशा खाली पेट कीजिए। अगर सुबह कुछ खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और फिर देखिए चमत्कार। चलिए इस पीसफुल ज्ञान के बाद बोरी के एनर्जेटिक मोड को ऑन करते हैं ये अगले गीत के साथ।

कदमों से चलना सबसे बेस्ट है। अगर आप रोज सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा में 20 से 30 मिनट तेज चलते हैं तो आपका दिल हमेशा जवान रहेगा। अगर वॉक पर जाने का वक्त नहीं है तो घर पर ही एक मिनट के लिए प्लैंक पोजीशन में रहिए। ये आपके बेली फैट को कम करने और कोर बॉडी को रॉक सॉलिड बनाने के लिए किंग्स एक्सरसाइज है। एक बात याद रखिए, बेड से उठते ही झटके से एक्सरसाइज मत शुरू कीजिए। पहले अपनी बॉडी का आलस भगाने के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट ट्विस्ट कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतने ही खुश रहोगे। तो आलस छोड़िए और थोड़ा सा पसीना बहाइए। चलिए आपकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए प्ले करती हूँ आज का ये अगला गाना।

वेवलेंथ वही, एनर्जी वही। आप है मेरे साथ, यानी आपकी अपनी आरजे याजू के साथ आकाशवाणी ईटानगर पर। योगा हो या एक्सरसाइज हो गई, अब बात करते हैं उन छोटी छोटी हेल्थ टिप्स की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा और आज ही से फॉलो कीजिएगा। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से पहले कम से कम एक या दो ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर फास्ट बना देता है। हम सब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि खाने को इतना चबाओ कि वो पेट में जाने से पहले पानी बन जाए। कम से कम 32 बार चबा कर खाइए, एसिडिटी और गैस हमेशा के लिए गायब। तीसरा है किंग साइज ब्रेकफास्ट। हमारे सुबह का नाश्ता सबसे हैवी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अपने ब्रेकफास्ट में लोकल फ्रेश फूड्स, उबले हुए अंडे या स्प्राउट जरूर शामिल करें। नाश्ता कभी स्किप मत कीजिएगा। अपनी डाइट में से तीन सफेद चीजों को थोड़ा कम कीजिए, सफेद नमक, सफेद चीनी और मैदा। इनकी जगह सेंधा नमक और गुड़ का इस्तेमाल शुरू कीजिए। कोशिश करिए कि आपका डिनर रात को 8 बजे से पहले हो जाए। और हां, सोने से आधा घंटा पहले अपना फोन स्विच ऑफ या साइलेंट जरूर कर दे, ताकि आपको 60 घंटे की सुकून वाली नींद मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे का आज का सफर बस यही तक था। उम्मीद करती हूं कि आज की बातें आपके काम आएंगी और आप आज का दिन पूरी एनर्जी और अच्छी सेहत के साथ बिताएंगे। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे पहला घर है। इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे यानी अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर पर गाने और काम की बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए अरुण FM, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

दोस्तों ये तो सुबह सवेरा उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा, अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। इसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब सुनिए आप अपने दैनिक न्यूज अपनी भाषा में अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ आपके लिए।

नमस्कार दोस्तों, आपात आने दैलेक में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से खबर। खबरों का सिलसिला यही खत्म हुआ तो क्या हुआ, अभी तो सुबह का असली ज्ञान, गपशप और कहानियों का सफर शुरू होने वाला है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजी याजू, आपका पॉडकास्टर और इस खूबसूरत सुबह का होस्ट। लेकर हाजिर हूं आपका सबसे खास इन्फॉर्मेटिव और थासू प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट।

अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो वैली की ठंडी और हसीन हवाओं से लेकर ईटानगर की इस चहल पहल भारी सुबह तक आज का दिन बड़ा ही प्यारा है। सुबह का वक्त न सिर्फ एक नया दिन लेकर आता है बल्कि अपने साथ सदियों का इतिहास और कहानियों भी लेकर आता है। आज के शो में हम गुजर चुके वक्त को पन्नों को भी पलटेंगे और साथ ही आज की ताजा खबरों पर भी नजर डालेंगे, यानी ज्ञान भी मिलेगा और ढेर सारे मनोरंजन भी। तो चलिए अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए और इस हसीन सुबह को और शानदार बनाते हैं एक बेहतरीन गाने के साथ। एंजॉय कीजिए ये पहला ट्रैक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। मेरे साथ दोस्तों, आज तारीख है 18 जून। सबसे पहले हम हमारी इमेजिनरी टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं दुनिया के इतिहास की तरफ और देखते हैं कि आज ही के दिन ग्लोबल हिस्ट्री में क्या बड़े हिला देने वाले इवेंट्स हुए थे। द बैटल ऑफ वाटरलू 1815, आज ही के दिन फ्रांस के सबसे पावरफुल और निडर एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में आखिरी और सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था, लेकिन इस एक लड़ाई ने उनका पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये हमें सिखाता है कि वक्त कभी भी पलट सकता है, इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए।

विंस्टन चर्चिल्स फाइनेस्ट आवर स्पीच 1914। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब हिटलर की सेना तबाही मचा रही थी, तब आज ही के दिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने रेडियो पर अपना सबसे मशहूर स्पीच दिया था, जिसे फाइनेस्ट आवर कहते हैं। उनका ये भाषण इतना पावरफुल था कि इसने पूरी हारी हुई जनता और सेना में जान फूंक दी थी। वर्ड्स में सच में बहुत ताकत होती है दोस्तों। फर्स्ट अमेरिकन वुमेन इन स्पेस 1983। आज ही के दिन डॉक्टर सैली राइट अमेरिका की पहली और दुनिया की सबसे जवान महिला एस्ट्रोनॉट बनी थी, जिन्होंने चैलेंजर स्पेस शटल के जरिए अंतरिक्ष में कदम रखा था। सैली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आसमान पर हक सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि उनका है, जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। गर्ल पावर एट इट्स बेस्ट। द साइनिंग ऑफ सॉल्ट टू ट्रीटी 1979। वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और सोवियत लीडर लियोनिद ब्रेजनेव ने वियना में न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल करने के लिए इस हिस्टोरिक ट्रीटी पर साइन किया था। यह दिन याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, आखिरी रास्ता हमेशा बातचीत और शांति से ही निकलता है। दुनिया का चक्कर हमने लगा लिया दोस्तों, अब हमारे प्यारे भारत के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और मैं हूं आपके आरजे याजू। ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब आते हैं हमारे प्यारे भारत के इतिहास पर और देखते हैं कि 18 जून हमारे देश के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण और भावुक दिन रहा है। आज ही के दिन झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग शहीद हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। उनकी ये कुर्बानी और वीरता आज भी हर इंडियन के खून में देशभक्ति का जोश भर देती है। उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। आज ही के दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहाई के नेतृत्व में गोवा को पोर्चुगीज रूल से आजाद कराने के लिए पहला बड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। हम सोचते हैं कि 1947 में पूरा भारत आजाद हो गया था, लेकिन गोवा को आजाद होने में और लंबा वक्त लगा और उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। इसलिए आज के दिन को गोवा में क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी जीनियस रिकॉर्ड 1980। आज ही के दिन भारत की ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी ने इम्पेरियल कॉलेज लंदन में 13 डिजिट के दौरान रैंडम नंबर्स का दिमाग में ही गुना किया और सिर्फ 28 सेकंड में बिल्कुल सही जवाब देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। जब दुनिया के कंप्यूटर फेल हो रहे थे, तब हमारी इंडियन बेटी का दिमाग सबसे तेज चल रहा था। भारत का ब्रेन का लोहा पूरी दुनिया में माना। हमारे नोटिस के इतिहास में आज का दिन बेहद इमोशनल है। मणिपुर की टेरिटरी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उन शहीदों की याद में आज मणिपुर में जून अपराइजिंग डे मनाया जाता है, जो वहां के लोग की अपनी मिट्टी के प्रति मोहब्बत को दिखाता है। हमने दुनिया और देश का इतिहास तो जान लिया दोस्तों, अब बारी है आज की ताजा खबरों की। पर पहला एक और बेहतरीन गाना आप सबके लिए।

0: रेडियो की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट और अब वक्त है आज यानी 18 जून 2024 के अरुणाचल टाइम्स के टॉप न्यूज स्टोरीज पर एक नजर डालने का। देखते हैं हमारे स्टेट और देश में क्या हलचल रही है। पहली बड़ी खबर, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान में चिंता जताते हुए कहा है कि मणिपुर में चल रही अशांति और अनरेस्ट के कारण स्टेट के डेवलपमेंटल वर्क्स और प्रगति पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सभी से शांति बहाल करने की अपील की है ताकि विकास का काम फिर से तेजी से शुरू हो सके। नेपको इश्यूज एडवाइजरी ऑन पारे डैम वाटर रिलीज। हमारे लोकल एरिया से एक बहुत जरूरी एडवाइजरी आई है दोस्तों। नेपको यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने पारे डैम से पानी छोड़े जाने से को लेकर एक वार्निंग और एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने आसपास के और डाउनस्ट्रीम इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी के पास न जाने और पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। प्लीज आप सब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाउंड्री डिस्प्यूट विद अरुणाचल पार्टली रिजॉल्व, असम मिनिस्टर। एक अच्छी और राहत वाली खबर हमारे स्टेट के लिए। असम के मिनिस्टर ने बयान दिया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सदियों पुराना बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था उसे काफी हद तक यानी पार्टली रिजॉल्व कर लिया गया है। दोनों स्टेट्स के बीच रिश्ते और बेहतर हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छा संकेत है। पर पैनल मूव्स हायर एजुकेशन स्पेंडिंग से एनईपी 6% जीडीपी टारगेट अनमेट। एजुकेशन सेक्टर से खबर है कि एक पार्लियामेंट्री पैनल ने हायर एजुकेशन पर खर्च को बढ़ाने की सिफारिश की है। पैनल का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो टारगेट था कि जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च हो वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस पर जल्द काम होना जरूरी है। और आखिरी में एक बेहद गर्व वाली कहानी जिसे आज अरुणाचल टाइम्स के फ्रंट पेज पर जगह दी है। आज याद किया गया है मोन्यूल के एक अनसंग हीरो मकपोन खेर ग्यामसो को। वो एक ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने हमारे रीजन की हिफाजत और आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसका वो हकदार थे। अरुण एफएम उन्हें दिल से सलाम करता है। खबर का सिलसिला यूं ही रखता है। चलिए चलते हैं हमारे क्लोजिंग सेगमेंट में। तो दोस्तों, ये था मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: से आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन न सिरोगंगो तागिन प्रोग्राम मुखोगिला युनिंगा बिनताम गेन सि राजीव राय। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 7 समिट दोंपामगा फ्रांस गे इवाम लुमयो दोंपाम गेन कुबला मे पादुकु सोग दोंपाम सुम प्राइम मिनिस्टर मोदी नेमे प्रमोटिंग बैलेंस इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ अलदो रिबाम संगबाम लाजुकोला बेपालिन दुखु सो डेवलपिंग कंट्रीज मोकुलो उगुमनंग रिच सिंगसि योमा नामसम अलरोंग रिच सिंगस गे दव इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ददनो रिगे संग तकेला बेपालिन दुखु अरे नाचुब अफ्रीका लैटिन अमेरिका ओक पेसिफिक आइलैंड कंट्रीज ददलो कनेक्टिविटी सम अलारोंग बलेन जितकेला मे फालिन दुखो। अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन मियो असम स्टेट लो आर दी पंचायती राज एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन मिनिस्टर अतुल बोरा ने कारक्सुला नोंपामगु नोंबामगन खुबेला मे पादुखो सो गो दोंपाम सो अरुणाचल प्रदेश गला असम स्टेट लो एक्साइज डिपार्टमेंट लो सीनियर ऑफिसर्स दंगा दोंगबाम गन खुबेला बेपालेन दुखु सो गामा सम डिप्टी चीफ मिनिस्टर गन गे सोशल मीडिया पोस्ट लु बेपालेन दुखु नेफको पारे हाइड्रो पावर स्टेशन दुईमुख लोक बेपा खुनाम गे सको लो अंकर चाकर्मा बकेला एडवाइजरी को मैं पालें दुखो अरे नेचुक व इस सकोलो अदराकोलो दोंगने ददनो ओके डाउनस्ट्रीम तकालो दोंगने नी ददनो सो अपो अर्सु ये दोसो बसु कनोतला दोंगला केला अला डिप्टी जनरल मैनेजर हाइड्रो पावर हाइड्रो स्ट्रक्चर मेन पावर गए इंजीनियर ताबा गागुंग में पालिंदु को सके ने एडवाइजरी जिलिन ने ना तेबोका बोला सिनामिया नाम को दों बोलो ने कोंग गब अरेंकामाई ने ला में पालिंदु को पापुमपाने डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मयो क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट ने निजर तोफर फाने दे देंगा बेटी बचाओ बेटी फराओ स्कीम का रालो के डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यूपियालो पहले स्टेशन अमेन को जिले ना खुला रिगन यू कुबला में फालें दुखो सो अलो लो पंपम पर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर लोफसंग सरेंग ने में दों कुम ने दे देंगा रोड सुकुनाओं के सकेने पूरी लिख जैसे ना रित गुना बके पूरी का अगुलो पूरी लिख का अगुलो एप्टिट्यूड स्किल्स और के पर्सनालिटी डेवलपमेंट सम अलग बेडिलेंस लें दो बड़े बांध तक केला में पालें दुखो अरुणाचल प्रदेश लो अके स्काउट मास्टर्स करण गांव गन्या डोंग जुम्दो आंगु तायक मिबांग ताजे मारा ला संजय किंते बुलमी बुलूंगा मध्य प्रदेश लो ट्रेनिंग सेंटर गुलो अतो आयुनगे कोर्स ना अलरों बढ़िया गन को बोला बिपालें दुखो तिराब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर तेचू अरन गलकब कौनसा लो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ग तकिया क्या कम को ना मरको लाख अखिन गुला एजर चामुला अंगुनी किलो ग थर्सडे ट्यूसडे अलोलो डीसी ऑफिस के चैम्बर लो जिलिनगंज को बोला बिपालें दुखो Department of Research nga anyang changka nyula nyunguna na ba menggap dukula Platinum Jubilee Celebration nga anyang guba sobam dukuba kilo ko Tuesday alulo ko sorab gan kuba la mipalin duku Meteorological Department Tedya to Meteorological Center Itanagar lo ko mipa ko na nga Anachal Pradesh lo ringgula akya district gulo nyudo nga achala ba Olog tedu la येलो अलर्ट को कातम पे खुला मैं पा दुखो सो गो डिस्ट्रिक्ट अरिंग ला अक्या को कातम ने लो कोई गुने लो दो गुन दोरे अंग तक लंच दोगा अच्छा लब होलक ते दूला मैं पा दे दुखो

नमस्कार दोस्तों, तागिन दैलिक में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से खबरों का के सिलसिला के बाद अब वक्त हो चला है उन यादों उन दोनों उन और उन नगमों का जो मौसम बदलने पर भी हमारे दिल के पास रहते हैं। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू और इस खूबसूरत सुबह का होस्ट लेकर हाजिर हूं आपका सबसे प्यारा संगीत से बड़ा हुआ और हमेशा ताजा रहने वाला कार्यक्रम सदाबहार। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि गाने बदल सकते हैं, मौसम बदल सकता है, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है अच्छे संगीत की खुशबू। आज की इस सुहानी सुबह में हम पुराने जमाने के हसीन गीतों को याद करेंगे, पर उससे पहले घर से निकलने वाले हमारे दोस्तों के लिए मौसम का हाल जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीरो वैली से लेकर पासीघाट तक और हमारे कैपिटल ईटानगर में मौसम क्या रंग दिखाने वाला है, ताकि आप अपना दिन पहले से प्लान कर सके। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे सदाबहार गाने के साथ, जो आपकी सुबह को रोमांटिक और सुहाना बना देगा।

केंद्र यानी रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर के दफ्तर और जानते हैं आज यानी 18 जून 2026 को हमारे कैपिटल सिटी ईटानगर का मौसम कैसे करवट लेने वाला है। आईएमडी की रिपोर्टिंग के मुताबिक आज ईटानगर का आसमान पूरी तरह से बादलों से घिरा रहेगा। अगर हम अभी की बात करें दोस्तों तो सुबह सुबह हमारे ईटानगर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन रुकिए, हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 93% यानी 93% तक चली गई है। इस हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस आपको लगभग 28 डिग्री सेल्सियस यानी 28 डिग्री सेल्सियस जैसा फील होगा, मतलब थोड़ी सी चिपचिपाहट और उमस महसूस हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर में हमारे यहां स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म यानी बादल गरजने के साथ साथ रुक रुक कर बारिश होने के पूरे चांस है। आज दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा और रात होते होते ठंडक थोड़ी बढ़ेगी और मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिन के समय बारिश होने के चांसेस 65% यानी 35%, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी और रात होगी बारिश का खतरा 70% तक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऑफिस या किसी काम से निकल रहे हैं तो बादलों के भरोसे मत रहिए, अपना अम्ब्रेला और रेनकोट साथ रखना बिल्कुल मत भूलें। ईटानगर का हाल तो हमने जान लिया दोस्तों, अब पूरे अरुणाचल प्रदेश में मौसम क्या धूम मचाने वाला है ये बताती हूँ एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार। अब बात करते हैं हमारे पूरे खूबसूरत और विशाल अरुणाचल प्रदेश के मौसम की, क्योंकि हमारे स्टेट की ज्योग्राफी ऐसी है दोस्तों कि यहाँ एक ही दिन में हर इलाके का मौसम बिल्कुल अलग मजा देता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने आज के लिए पूरे स्टेट में एक कम्प्रहेंसिव वेदर फोरकास्ट और हैवी रेनफॉल अलर्ट जारी किया है। मॉनसून इस वक्त हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिनों तक पूरे अरुणाचल में बादल छाए रहेंगे और ज्यादातर हिस्सों में हल्की से लेकर भारी बारिश होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फुटहिल्स और वैली एरियाज की। पासीघाट, नामसाई और चांगलांग जैसे इलाकों में आज मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहां सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी हुई है और दोपहर के बाद तेज थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। इन इलाकों में रिलेटिवली ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से दिन में थोड़ी गर्मी और चिपचिपाहट लग सकती है। हवा की बात करें तो पूरे स्टेट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से 4 से 5 मिले प्रति घंटा यानी 4 to 5 MPH की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है, जो बारिश के साथ थोड़ी और तेज हो सकती है। अब चलते हैं हमारे हसीन और ऊंचे पहाड़ों इलाकों की तरफ यानी तवांग, जीरो, बोमडिला और मेचुका। दोस्तों यहां का मौसम बेहद सुहाना और ठंडा बना हुआ है। इन हिली स्टेशन पर मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस यानी 15 तक दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में घना कोहरा यानी डेंस फॉग होने की वजह से सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है। मौसम विभाग ने हमारे उन दोस्तों के लिए आज या कल में NH415 या बाकी पहाड़ी रास्तों पर लंबे सफर के लिए निकल रहे हैं एक स्पेशल एडवाइजरी दी है। बारिश के चलते कुछ सेंसिटिव जोन्स में माइनर लैंड स्लाइडिंग और रॉकफॉल्स के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त स्पीड कम रखें और रोड पर पूरी नजर बनाए रखें। साथ ही हमारे जो किसान भाई इस वक्त अपने राइस नर्सरीज मेज या सीजनल वेजिटेबल्स की खेती में बिजी है, उन्हें सलाह दी गई है कि वो अपने फील्ड्स में पानी को जमा ना होने दें, ड्रेनेज पाइप्स को साफ रखें ताकि ज्यादा बारिश से फसल खराब ना हो। तो मेरे प्यारा दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम सदाबहार का सफर बस यही तक था। ये आकाशवाणी का ईटानगर RNFM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं

0: दिल्ली माफी चाहूंगी, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलोंग केंद्र से समाचार।
1: सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्या खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की दो और मिजोरम से एक सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
7: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक

0: नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend Viva Tech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital. President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
4: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
5: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
3: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We hear more from our correspondent.
6: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first day of her visit, President Murmu will attend a program on the empowerment of tribal society through spiritual awakening at Bethul in Madhya Pradesh. We have more from our correspondent.
7: President will arrive in Indore and then travel to Bethul, where she is scheduled to attend a program organized by Brahma Kumaris. Later, she will visit the Omkareshwar temple and participate in the evening aarti. On June 19, the President will attend an event marking International Sickle Cell Anemia Day. On June 21st, President Murmu will take part in International Yoga Day celebration in Jabalpur. She will also attend the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University as the chief guest. Later, she will visit Kuno National Park before returning to New Delhi. In view of the President's visit to Bethul, District Collector Dr. Saurabh Sanjay Sonwani has imposed certain restrictions as part of the security arrangements. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
3: Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram will take place today. In Jharkhand, Jharkhand Mukti Morcha's Badrinath Ram, Congress candidate Pranav Jha, and independent candidate Parimal Nathwani are contesting the election. In Mizoram, candidates from the ruling Zoram People's Movement, ZPM, and the opposition Mizo National Front, MNF, are locked in a direct contest to fill Mizoram's lone Rajya Sabha seat. The BJP and the Congress have decided to abstain from voting. The India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, will come into force on the 15th of July this year. The Ministry of Commerce and Industries informed that the Agreement on Social Security, also referred as the Double Contribution Convention, DCC, will come into effect on the same day. We have more from our correspondent.
8: The Ministry of Commerce and Industries also noted that the period of exemption under the Double Contribution Convention, DCC, has been increased from 3 years to 5 years, marking a major gain for India's temporary workers, hailing the government as a triumph of economic statecraft. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal stated that the simultaneous enforcement of the CETA and the Double Contribution Convention will open up significant new opportunities for India's exports as India India has secured immediate duty-free access on 99% of tariff lines. He said that this will allow textiles, leather, marine, engineering and processed food sectors to compete with no disadvantage.

गुड मॉर्निंग ईटानगर, दिल्ली और शिलांग से अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से क्षेत्रीय खबर, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबर। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है हमारे शहर की बातों का, आपकी और हमारी यादों का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू, लेकर हाजिर हूं आपके अपना सबसे चहेता और लोकल मॉर्निंग शो हेलो ईटानगर।

अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सुबह बड़ा ही प्यारा दिन लेकर आई है। आज न सिर्फ एक नया दिन है, बल्कि आज कैलेंडर में एक बहुत ही मजेदार और हिस्टोरिक दिन दर्ज है। आज यानी 18 जून को पूरी दुनिया मनाती है इंटरनेशनल पिकनिक डे। क्या बात है ना? नाम सुनते ही दिमाग में ढेर सारा खाना, पहाड़, नदी का किनारा और दोस्तों की हसीन यादें घूमने लगती हैं। आज के शो में हम गहराई से बात करेंगे कि इस दिन की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है और दुनिया भर में इसे कैसे अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत और ज्ञान से भरे सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद फ्रेश और गाने के साथ। सुनिए ये गाना, मैं अभी हाजिर होती हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर हेलो ईटानगर अपने होस्ट याजू के साथ। दोस्तों आज इंटरनेशनल पिकनिक डे है, तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री और एजुकेशनल फैक्ट्स। पिकनिक शब्द असलियत में फ्रेंच लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है, पिक जिसका मतलब होता है टू पिक यानी चुनना, और निक जिसका मतलब होता है समथिंग ऑफ स्मॉल वैल्यू यानी कोई छोटी चीज। 14 सेंचुरी से ही फ्रांस में लोग शिकार पर जाने के बाद बाहर खाना खाते थे, लेकिन सही मायने में पिकनिक एक सोशल इवेंट तब बनी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी 1789 की क्रांति खत्म हुई। उससे पहले बड़े बड़े रॉयल पार्क्स में सिर्फ राज परिवार जा सकता था, पर क्रांति के बाद उन रॉयल पार्क्स को आम जनता के लिए खोला गया। तब पहली बार वहां की आम जनता घर से अपना ओन खाना बनाकर लाती थी और एक साथ बैठकर खाती थी। इसका सिलसिला वही नहीं रुकता दोस्तों, 19 सेंचुरी के आते आते इंग्लैंड में एक पिकनिक सोसाइटी बन गई थी। लंदन में लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और हर एक मेंबर अपने पसंद का कोई एक डिश और एंटरटेनमेंट का कोई जरिया लेकर आता था, जिसे आज हम मॉडर्न जमाने में पोटलक कहते हैं।

अब अगर हम बात करें कि ये दुनिया भर में कहां और कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो गिनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े पिकनिक का रिकॉर्ड लिस्बोन पोर्चुगल के पास है, जहां एक साथ 20,000 से ज्यादा लोग पिकनिक बनाने जमा थे। कई देशों में आज के दिन बूढ़ों और बच्चों के लिए आउटडोर गेम जैसे ट्री लेग रेस और टग ऑफ वार ऑर्गेनाइज किया जाते थे। इस दिन का सिग्निफिकेंस यानी महत्व आज के डिजिटल एरा में और भी बढ़ गया है। आज हम लोग डिजिटल फैटिक का शिकार है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि थोड़ा रुकिए, नेचर के पास जाइए, ताजा हवा में सांस लीजिए और सबसे जरूरी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिना स्क्रीन के फेस टू फेस बैठकर वक्त बिताइए। वैसे पिकनिक का नाम सुनते ही मुझे मेरा बचपन और मेरी अपनी फैमिली की कुछ बहुत ही प्यारी यादें याद आ गई है। क्या आपको भी अपना बचपन याद आया? बात करेंगे इस इमोशनल पिकनिक टॉपिक पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दोस्तों, बचपन की पिकनिक्स की बात ही कुछ अलग थी ना। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं छोटी थी, हमारी पूरी फैमिली, सारे कजन्स और सिबलिंग्स मिलकर जब नदी के किनारे या पहाड़ों पर पिकनिक पर जाते थे तो बड़े बूढ़े हमें कहते थे, चलो आप सब एक कर करके परफॉर्म करके दिखाओ, कोई गाना सुनाओ, कोई डांस करो या कोई कविता सुनाओ। अब सच बताऊं तो उस वक्त थोड़ा गुस्सा और शर्म आती थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस के बाद बड़े खुश होकर रिवार्ड में 10, 20 या 50 रुपए देते थे ना, तो लगता था हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। मैं तो इतनी खुश होती थी कि उन पैसों को बचाकर तुरंत अपने पसंद का सारा जंक फूड और चिप्स खरीद लेता था, जो रोज घर में खाने को नहीं मिलता था। बचपन में दिमाग सिर्फ जंक फूड पर ही चलता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है दोस्तों। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो पिकनिक पर जाने का पूरा चार्ज, मैनेजमेंट और जिम्मेदारी अक्सर मेरे हाथ में ही होती है। तो और अब

मैं वही चीज अपने छोटे नीजेस और नेफ्यूज के साथ करती हूँ जो कभी मेरे साथ होती थी। मैं उन्हें कहती हूँ खड़े होकर गाना गाने को, और परफॉर्मेंस के बाद पैसे देती हूँ। एक तरह से पूरी साइकिल उल्टी हो गई है, और ये देखकर काफी नॉस्टैल्जिया होता है। लेकिन अब एक बात दिल से कहूँ, वो बचपन वाला फीलिंग और अब बड़े होकर पिकनिक पर जाने का फीलिंग बिल्कुल बदल गया है। नॉस्टैल्जिया दिमाग में घूमता रहता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अब पिकनिक पसंद नहीं है। मुझे आज भी उतना ही प्यार है पिकनिक से, क्योंकि इस बिजी लाइफ में यही एक ऐसी जगह है जहां हम बिना किसी काम के या ऑफिस के टेंशन के अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। अब मुझे जरूर बताइए दोस्तों, आप अपने बचपन की पिकनिक को कितना मिस करते हैं? और हाँ, सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में पिकनिक का असली मजा तो नवंबर से शुरू होता है और अप्रैल तक चलता है। अभी तो जून है, मानसून का मौसम है और बारिश हो रही है तो। लेकिन दोस्तों, ये गपशप और प्लानिंग तो आज से ही शुरू हो जाती है ना। चलिए, अब सभी को छोड़ जाती हूँ एक और बेहद खूबसूरत गाने के साथ। फिर मिलते हैं क्लोजिंग सेगमेंट में।

0: तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम हेलो ईटानगर का सफर बस यहीं तक था। आज इंटरनेशनल पिकनिक डे पर हमने काफी ज्ञान की बातें की, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंग्लिश पिकनिक सोसाइटी से इसका कनेक्शन भी जाना और साथ ही बचपन की उन हसीन यादों को भी ताजा किया जहां परफॉर्मेंस पर रिवार्ड मिला करता था। उम्मीद करती हूं कि आज का ये शो आपके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में बचपन की चमक लेकर आई होगी। तो फिर देर किस बात की, नवंबर का वेट मत कीजिए, आज ही अपने दोस्तों और परिवार को फोन लगाइए, घर पर ही एक छोटी सी इंदौर पिकनिक प्लान कीजिए और साथ में बैठकर खाना खाइए। अब मुझे यानी अपने आरजी को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे दिल्ली और दिल्ली केंद्र से समाचार के बाद। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील

0: देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री की यात्रा से विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस संबंध और मजबूत होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रही हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिरिश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वायदा भी शामिल है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। अफगानिस्तान की टीम 232 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड ने 3-3 विकेट लिए जबकि प्रिंस यादव ने 2 विकेट हासिल किए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप ए के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने 36 साल बाद विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से राष्ट्रीय समाचार। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है टिंसल टाउन यानी बॉलीवुड की चमक दमक ढेर सारी धांसू खबर और चटपटी बातों का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू और बॉलीवुड का सबसे बड़ा खबरी लेकर हाजिर हूं आपका सबसे बड़ा एंटरटेनिंग और मसलेदार शो फिल्मी गपशप। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि उन्हें गॉसिप पसंद नहीं, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आज के इस शो में हम बात करेंगे टिंसल टाउन की सबसे गर्म खबरों के बारे में। बात होगी बड़े पर्दे की नए रिलीजेस की, बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की, और हाँ ओटीटी पर चल रहे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट और कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज की जिन्होंने सोशल मीडिया का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत फिल्मी होने वाला है। शुरुआत करते हैं इस हसीन सुबह के पहले सुपरहिट गाने के साथ।

एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी? सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर फिल्म कप शप अपने होस्ट याशु के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थिएटर में चल रही सबसे बड़ी मूवी की, यानी जो थिएटर पे आने वाली है रणवीर कपूर और साई पल्लवी की साइंस साईफाई एपिक ड्रामा की, जो बॉक्स ऑफिस पर आग लगा

आने वाली है। इस फिल्म को लेकर हर तरफ इतना क्रेज है कि लोग ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म काफी अच्छे करने की ओर पर है।

दोस्तों अब आती है बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान की खबर। एसआरके ने अपनी अगली मेगा एक्शन ट्रेलर फिल्म किंग की शूटिंग लंदन में अगले महीने से शुरू करने का प्लान पक्का कर दिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है दोस्तों, इस मूवी में उनकी रियल लाइफ बेटी सुहाना खान भी उनके साथ एक्शन करती नजर आएंगी और फिल्म के डायरेक्टर सुजोय घोष इसको एक इंटरनेशनल लेवल का टच दे रहे हैं। इनसाइड न्यूज तो ये भी है कि इस फिल्म में हॉलीवुड के स्टंट कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है जो जॉन विक जैसे फिल्मों का एक्शन डिजाइन कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त की सबसे बड़ी फ्रेश अपडेट संगीत और फिल्मों के कॉरिडोर्स से आ रही है। करण जौहर ने केजीएफ सुपरस्टार यश के साथ एक बहुत बड़ी मल्टी लिंगुअल एक्शन स्पेक्टिकल का अनाउंसमेंट कर दिया है जिसकी शूटिंग इसी साल के एंड में शुरू होने वाली है। यश इस फिल्म में एक बिल्कुल नई कॉप अवतार में नजर आने वाले हैं और उनके ऑपोजिट बॉलीवुड की एक टॉप एलिस्टर एक्ट्रेस को कास्ट करने की बात चल रही है। बीटाउन में इस कोलोब्रेशन को लेकर अभी से बातें शुरू हो चुकी है। खैर इन सुपरस्टार का जलवा तो हमेशा रहता है। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है, पर पहले एंजॉय कीजिए ये बेहतरीन ट्रैक।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500.
2: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों बात करते हैं थिएटर्स के एक बहुत ही बड़े और फ्रेश और ऑनगोइंग ट्रेंड के बारे में. आजकल बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों के गैप के दौरान आइकॉनिक कल्ट क्लासिक फिल्मों को 4K और IMAX फॉर्मेट्स में री रिलीज करने का क्रेज बहुत ज्यादा चल रहा है. इस हफ्ते थिएटर्स में पुरानी ब्लॉकबस्टर रोमांटिक और एक्शन फिल्मों को नए साउंड डिजाइन के साथ उतारा गया है. और मजा देखिए दोस्तों, नई जनरेशन के यूथ इन फिल्मों को देखने के लिए मल्टीप्लेक्सेस में लाइन लगा रहे हैं. ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक इन री रिलीजेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कई नई लो बजट फिल्मों से भी बेहतर चल रहा है, क्योंकि लोग बड़े स्क्रीन एक्सपीरियंस और नॉस्टैल्जिया मिस नहीं करना चाहते. अगर आपने भी अपने पसंदीदा सुपरस्टार की वो पुराने क्लासिक बड़े पर्दे पर नहीं देखी है तो इस वीकेंड का टिकट जरूर चेक कर लीजिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ.

रेडियो की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर फिल्मी गपशप। दोस्तों, जहां बॉलीवुड हो वहां कंट्रोवर्सीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वक्त इंटरनेट पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक बड़ी मीडिया हाउस के बीच। दरअसल एक पोर्टल ने आलिया भट्ट और उनकी बेटी राहा के कुछ प्राइवेट फोटोज बिना परमिशन के क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। इस पर आलिया ने काफी गुस्सा जताया है और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर प्राइवेसी वायलेशन पर सवाल उठाए हैं। उनके सपोर्ट में करीना कपूर खान, अनुष्का शर्मा और उनके पति रणबीर कपूर भी खड़े हो गए हैं। सेलेब्स का कहना है कि पापराजी को एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, खासकर जब बच्चे इन्वॉल्व हो। इंडस्ट्री के सीनियर्स ने अब एक नए लीगल सेल के बारे में सोचना शुरू कर दिया है जो एक्टर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा और बिना परमिशन फोटोज बेचने वाले पोर्टल्स पर भारी फाइन लगाएगा। इंटरनेट पर फैंस भी दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग पापराजी को ब्लेम कर रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं कि ये स्टारडम का पार्ट है। आपका इस पर क्या कहना है हमें जरूर बताएगा मैसेज पर। कॉन्ट्रोवर्सी के इस गर्म मौसम को थोड़ा ठंडा करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ। फिर बात करेंगे ओटीटी पर क्या नया धमाका हुए है इसकी।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों अब रुक करते हैं ओटीटी की दुनिया का क्योंकि हर कोई आजकल फोन पर ही कंटेंट बेंच वॉच कर रहा है. तो सबसे बड़ी खबर यह है कि प्राइम वीडियो पर पंचायत 4 सीजन रिलीज हो चुका है. और सच बताऊं दोस्तों, जितेंद्र कुमार यानी हमारे सचिव जी, रघुबीर यादव और नीना गुप्ता ने इस बार भी पूरी मेहनत से दिल जीत लिया है. इस सीजन में फुलेरा गांव की राजनीति और सचिव जी का लव एंगल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है. सबसे बड़ा सरप्राइज इस बार का नया ग्रे कैरेक्टर है जो गांव के नए प्रधान की तरफ से आया है. मेरा रिव्यू तो यही है कि अगर आपने पिछले 3 सीजन देखे हैं तो इस वीकेंड इसको मिस करने की भूल बिल्कुल मत करना. ये 5 out of 5 सीरीज है. साथ ही एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से एक नई स्पिन ऑफ लिमिटेड सीरीज चुपके से ड्रॉप की गई है जिसमें राजकुमार राव का एक बड़ा कैमियो है. इस सीरीज को लेकर कोई बड़ा प्रमोशन नहीं किया गया है, इसलिए फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज बन गया है और लोग इसके डार्क ह्यूमर की काफी तारीफ कर रहे हैं. चलिए ओटीटी का ज्ञान तो हो गया, अब चलते हैं तिनसल टाउन के उन कॉरिडोर्स में जहां ढेर सारी रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स की गॉसिप्स घूम रही है. पहले सुनिए ये गीत.

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों अब बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर चल रहे सबसे बड़े धमाके की. डायरेक्टर इम्तियाज अली की नई फिल्म में वापस आऊंगा ने पिछले 5 दिनों में ऐसी सॉलिड पकड़ बनाई है कि हर तरफ बस इसी फिल्म ने के पॉजिटिव माउथ ऑफ वर्ड की चर्चा है. सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स, लोग इसके डीप स्टोरी टेलिंग और सोलफुल म्यूजिक को देखने के लिए लगातार थिएटर्स का रुक कर रहे हैं और फिल्म की कमाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल खबर आ रही है जो हमारे यंग स्टार कार्तिक आर्यन से जुड़ी है. डायरेक्टर अनुराग बासु ने हाल ही में चल रही सारी रूमर्स पर पक्का ब्रेक लगाते हुए कन्फर्म कर दिया है कि उनकी और कार्तिक आर्यन की आने वाली मेगा रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म जिसमें साउथ सेंसेशन श्रीलीला उनके ऑपोजिट है बिल्कुल ऑन शेड्यूल है और इसी साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म का म्यूजिक पर प्रीतम काम कर रहे हैं और इसके एल्बम को अभी से एक नया बेंचमार्क बताया जा रहा है. तो कार्तिक के फैंस तैयार हो जाइए एक इंटेंस म्यूजिकल लव स्टोरी के लिए. अब सुनते हैं ये दूसरा गाना.

दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार या आकाशवाणी का ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything. So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. On the first leg, the first

0: दोस्तों, दिल्ली से अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से राष्ट्रीय समाचार खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है उस सेगमेंट का जिसका आप सभी को पूरे दिन सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। यह है आपका अपना आपकी पसंद का शो रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM पर मैं हूं आपकी RJ याचू। दोस्तों, इस शो की खूबसूरती यही है कि यहां गाने मैं नहीं बल्कि मेरे प्यारे खबरी और लिसनर्स चुनते हैं। आपके मैसेजेस और आपकी यादों से सजता है हमारा ये आखिरी सेगमेंट। आज भी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं हमारे डेली और लॉयल लिसनर की तरफ से, और कुछ नए भी हैं जो अलग अलग जगहों से हमसे जुड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं आज की हमारी पहली फरमाइश पर, जो आई है लंगहंगसम कार्बी आंगलोंग से। वहां से हमारे डेली लिसनर टेंसन क्रो, अतुल क्रो और सरलो क्रो ने हमें याद किया है और उन्होंने एक बेहद

लंकम सम से टेंशन अथुर और सरलो, दोस्तों आपकी फरमाइश हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी थी। मोहब्बत चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश करो, आंखों से झलक ही जाती है। थैंक यू हमसे रोज ऐसे ही जुड़ने के लिए। अब दोस्तों, अब और जो दो फरमाइशें हैं उनका आपस में एक बहुत ही प्यारा और दिलचस्प कनेक्शन है। पहली बात करते हैं हमारी एक और डेली लिस्नर की, यानी कुम्मे मई बागरा जी की, जो हमें होगी बागरा आलो से हमें सुनती है। उन्होंने एक बेहद सुनहरा गाना चुनकर अपने प्यारे पति देव जुमकर बागरा जी को डेडिकेट किया है। गाना है आप जो मेरे मीत ना होते। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। पता चला है कि उनके पति यानी जुमकर बागरा जी भी हमारे एफएम पर उतने ही एक्टिव है जितनी उनकी वाइफ। उन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है अपने एक खास दोस्त दुर्गा बागरा के लिए। लेकिन साथ ही जुमकर जी ने हमें एक छोटा सा मैसेज भी लिखा है। वो बोल रहे हैं कि कल उन्होंने अपने दोस्त के लिए जो गाना रिक्वेस्ट किया था, हमने वो प्ले नहीं किया और उनके लिए कोई गलत गाना चल गया था। जुमकर जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपसे और आपके दोस्त से माफी चाहते हैं। लाइव रेडियो पर कभी कभी ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, पर आज हम आपका बिल्कुल सही और परफेक्ट गाना लेकर आए हैं। अपनी भी जिंदगी में खुशियां का पल आएगा। मेरा मतलब है दोस्तों, ये देखकर दिल को इतना सुकून मिलता है कि एक ही घर में पति और पत्नी दोनों हमारे स्टूडियो को पूरा बिजी रखते हैं और एफएम के जरिए अपने दोस्तों और परिवार के चेहरे पर मुस्कान ले रहा है। पूरा बागरा परिवार लगता है संगीत का बहुत ही बड़ा शौकीन है। तो चलिए पहले सुनते हैं गुमे मई की फरमाइश उनके पति के लिए, और उसके तुरंत बाद सुनेंगे जुमकर जी का उनके दोस्त दुर्गा के लिए चुना हुआ ये गाना, ताकि कल की गलती आज पूरी तरह सुधर जाए।

दुर्गा बागरा जी, आई होप कि आपको ये गीत पसंद आया होगा जो आपके दोस्त जुमकर बागरा जी ने आपको डेडिकेट किया। और जुमकर जी और गमेमई जी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की ये संगीत वाली ट्यूनिंग ऐसे ही बनी रही, यही हमारी दुआ है। चलिए अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश पर, जो हमारे स्टेट की बॉर्डर के उस पार से यानी कोलाघाट असम से आई है। वहां से हमारा बेहद लॉयल लिस्नर रोमेश, रूनू और लकी हमें लगातार सुनते हैं और उन्होंने एक ऐसा गाना चुना है जो हर उस इंसान को हिम्मत देता है जो जिंदगी की राह में थोड़ा थक जाता है। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना हम सबको सिखाता है कि रास्ते में चाहे जितने भी मुश्किलें आए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुनिए ये आइकॉनिक ट्रैक।

गोलाघाट से रोमेश, रूनू और लकी, आप तीनों ने इस सुबह को इस गाने के जरिए एक अलग ही एनर्जी दे दी है। सही में दोस्तों, जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कांटों पर चलकर ही मिलते हैं साए बाहर के। चलिए दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं गोपुर की तरफ। वहां से हमारे प्यारे लिसनर सानू प्रधान जी ने एक बहुत ही बेहतरीन और सोलफुल गाना चुनकर भेजा है। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में ये एक ऐसा रोमांटिक ट्रैक है जिसे सुनते ही दिमाग को एक अलग ही सुकून मिलता है। सुबह के सुहाने मौसम में इससे बेहतर धुन और कोई नहीं हो सकती। सुनिए सानू जी की फरमाइश पर ये बेहद प्यारा गाना।

0: अगर इन पहाड़ों को कोई पार करता चला जाए तो यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूसिया होते हुए बुल्गारिया के उस छोटे से गांव तक पहुंचा जा सकता है जहाँ उल्कनम की लड़की का घर है। तुम चलो ना मेरे साथ बुल्गारिया।
1: शिवाय हिमालय के सिवा कहीं और जी नहीं पाएगा।
0: सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। तुम बुल्गारिया नहीं आ सकते, मैं यहां नहीं रह सकती।

गोपुर से सानू प्रधान जी, आपकी चॉइस सच में कमाल की है। इस गाने के संगीत ने पूरे स्टूडियो का माहौल एकदम हसीन बना दिया है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में आज फरमाइशों का सिलसिला इतना जबरदस्त था कि मेरे पास अभी भी काफी सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट बची हुई है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से आज मुझे शो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जिन लिसनर के गाने आज टाइम कम होने की वजह से छूट गई है, मैं उन सभी से माफी मांगती हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल का शो शुरू होते ही मैं सबसे पहले आपकी ही पसंद के गाने प्ले करूंगी। इस वादे के साथ अब मुझे यानी अपनी होस्ट याजू को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी शो में, इसी स्टेशन पर, देर सारी नई गानों और आपकी मीठी बातों के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता दीनयोग। दोस्तों कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है जहां होती है दिल से दिल की बात। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांसीसी व्यापार जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी करेंगे। इससे पहले कल G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला,

और बच्चों के लिए डिजिटल तकनीक तक सुरक्षित पहुंच से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। इन घोषणाओं का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओमकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्री शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सत्य निष्ठा से धन प्राप्त होता है और निस्वार्थ सेवा से प्रसिद्धि मिलती है। निरंतर अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और कर्म से बुद्धिमत्ता आती है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत के सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के वीर नेतृत्व ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरकर 77,096 पर और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ 24,077 के आसपास कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

The beautiful thing about today is that you get the choice to make it better than yesterday. Yani, आज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास चॉइस है इसे कल से बेहतर बनाने का. A very beautiful morning to all you lovely people tuning in right now. अगर आपने अभी अभी अपनी गाड़ी स्टार्ट की है, अगर घर पे रेडियो ऑन किया है या हेडफोन्स प्लग इन किया है, तो स्वागत है आप सबका रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, टेकिंग ओवर द एयरवेव्स टू ब्रिंग यू द अल्टीमेट डोज ऑफ हाई एनर्जी, इनक्रेडिबल म्यूजिक और एब्सोल्यूट गुड वाइब्स अगले कुछ घंटों के लिए. और दोस्तों, हमारे इस संगीत में सफर को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत बड़ा साउट आउट टू द वंडरफुल आरजे याजू. पिछले शिफ्ट ने क्या कमाल का माहौल बनाया है आरजे याजू नादा ने. आरजे याजू नादा, यू एब्सोल्युटली क्रश्ड इट, और स्टूडियो की एनर्जी अभी भी सुपर हाई है. तो बस उन्हीं के इस क्रेजी मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए स्टूडियो पर आ चुका हूं मैं, यानी आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास, लेकर तैयार हूं आपके फेवरेट सॉन्ग्स, मजेदार बातें और ए होल लॉट ऑफ रीजंस टू स्माइल. अपने डायल को लॉक कर लो, वॉल्यूम को कर लो थोड़ा ऊपर, और चलिए इस दिन को बनाते हैं कल से भी ज्यादा धमाकेदार.

भेजे दोस्तों पे से ये अगला गीत डांस पे चांस फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से जिसे गाया है सुनिधि चौहान जिसे गाया है दोस्तों सुनिधि चौहान ने एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग मैं लौट कर आता हूँ सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहाँ होती है दिल से दिल की बात

0: और लीजिए दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्मी लहर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए दोस्तों, हवाओं को करते हैं थोड़ा वेस्टर्न और चलते हैं वेस्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज।
1: Welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist is all about contradictions. It's about falling apart while trying to hold it together, looking back while moving forward, and finding yourself caught between vulnerability and confidence. We begin with a song that carries Olivia Rodrigo's signature mix of sharp wit and raw emotion. Drop Dead drives into the frustration and lingering feelings that can follow a difficult relationship. Capturing the thoughts we don't always say out loud, but definitely think. It's bold, honest, and impossible to ignore. Drop Dead by Olivia Rodrigo.

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day.
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलेडीज. अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है. श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है.
3: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे. प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे. इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है. आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे.
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं. वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी. राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी. झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है. चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं. सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा. मतगणना शाम 5 बजे होगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है. श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभी

लेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों लफ्ज अलग है मगर जज्बात तो एक ही है। संगीत के समंदर में ख्वाब तो एक ही है। जुबान समझ आए ना आए क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, दिलों को जो छू जाए वो अल्फाज तो एक ही है। नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही दास्तां लेकर आया है हमारा ये शो नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। हम अक्सर बॉलीवुड के गानों में खोए रहते हैं, लेकिन आज हम उन छुपे हुए खजानों को ढूंढ निकालेंगे जो हिंदी सिनेमा से दूर रीजनल इंडस्ट्रीज और इंडिपेंडेंट म्यूजिक एल्बम में हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। चाहे वो साउथ का कोई एनर्जेटिक बीट हो, पंजाब का भंगड़ा स्वैग, बंगाल की मीठी धुन, या फिर इंडी पॉप का वो पुराना जमाना जिसे सुनकर हम बड़े हुए हैं। आज भाषा की हर बाउंड्री को तोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ दिलों के तार छेड़ने वाले हैं। और जब बात हो रही है दिलों की तार को छेड़ने की, तो दोस्तों दांडिया क्वीन यानी फाल्गुनी पाठक अपनी आवाज का जादू बिखेरने आती है। तो दिलों की धड़कन को जब दोस्तों ये दांडिया क्वीन अपनी आवाज के जादू को बिखेरने आती है, तो दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, फाल्गुनी पाठक की आवाज में आइए सुनते हैं उन्हीं का एक बेहतरीन गाना, ये किसने जादू किया, ओनली ऑन रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपको थोड़ा पीछे ले जाने का, स्ट्रेट टू द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन इंडी पॉप। जब भी दोस्तों 2000 यानी 2000s के बॉय बैंड्स की बात होती है तो एक ऐसा गाना है जिसके बजते ही पूरा डांस फ्लोर झूम उठता था। व्हाइट सूट, किलर डांस मूव्स और वो दिलों को चुराने वाली स्माइल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया आप सबने। अपने दिल के धड़कनों को थोड़ा तेज कीजिए और प्योर नॉस्टैल्जिया में खो जाइए विद इंडियाज वेरी ओन बैंड ऑफ बॉयज और उनका आइकॉनिक ट्रैक गोरी, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम गीत माला।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत माला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे नाना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आइए सुनाते हैं आपको इस कार्यक्रम में पहला गीत फ्रॉम द फिल्म ट्रैफिक, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, ये गीत है नेकी की राह पे तू चल, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलो दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त करना होगा हमारा ये कार्यक्रम गीत माला का. लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी ऐसे संगीत में सफर पर हमारे बेहतरीन गाने सुनाते रहेंगे. लेकिन अभी आप कुछ अगले पलों के लिए सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है. श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है.
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे. प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे. इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है. ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है. आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है. एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया. संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है. उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं. केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें. खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है. दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है. परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है. न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया. न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी. झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है. सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा. मतगणना शाम 5 बजे होगी. फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: dispute over Iran's nuclear program and regional security issues. In FIFA World Cup 2026, Colombia began their campaign with a convincing 3-1 victory over Uzbekistan in Group K in Mexico City this morning. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कार्यक्रम की ओर। और अब श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
2: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
2: जी लोकेंद्र जी, कहिए कैसे हो आप?
3: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल
2: जी जी जी, इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए।
3: जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सर जी, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
2: जी हमारे यहाँ तो रिमझिम बारिश हो रही है।
3: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, आपने रिमझिम बारिश की बात करके बिल्कुल मन को खुश कर दिया है, क्योंकि हम तो अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भरी उमस हो रही है यहाँ पर।
2: ओहो जी जी, अभी तक बारिश हुई नहीं है आपके वहाँ?
3: हाँ, एक प्री मानसून बीच में हुआ था थोड़ा सा।
2: अच्छा।
3: उससे थोड़ा मौसम ठंडा हुआ, पर उसके बाद में फिर उमस भरी होने लग गई, चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है ना, वो हो रही है।
2: ओके ओके ओके।
3: पर प्रकृति है, सभी मौसमों का आनंद लेना चाहिए,
2: क्योंकि
3: अपन ठंड में रहते हैं, बरसात भी रहती है और गर्मी भी रहती है, तो गर्मी का भी एक अलग ही आनंद रहता है।
2: हाँ जी सही कहा आप, हर मौसम का अलग ही अंदाज है, अलग ही।
3: हाँ तो गर्मी को भी तो झेलना सीखना चाहिए,
2: बिल्कुल।
3: जीवन है इसमें, शरीर को मतलब बनाया ही ऐसा गया है कि सभी मौसमों को वो झेल सके।
2: बिल्कुल सही कहा
3: जी सर जी।
2: हाँ
3: जी। तो सर जी, आज जो मैं गीत लेकर आया हूँ, मतलब 16 जून है, 16 जून को आपने देखा होगा एक सुपरस्टार मतलब डिस्को डांसर है, मिथुन दादा का जन्मदिन है।
2: हमारी ओर से भी मिथुन दादा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
3: बिल्कुल। और मिथुन दादा का जो फिल्म का गाना है वो है डिस्को डांसर।
2: ओके जी।
3: हाँ, उसमें गाना है याद आ रहा है तेरा प्यार।
2: ओके जी जी जी जी।
3: और ये डिस्को डांसर फिल्म में जो म्यूजिक है वो है बप्पी दादा का।
2: जी बप्पी लाहिरी जी का। हाँ जी।
3: हाँ, तो ये डिस्को डांसर की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जो बप्पी दादा ने जो संगीत दिया है वो इस दुनिया में तो नहीं है बप्पी दादा, पर
2: हाँ
3: वो उनके संगीत को आज भी हम सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला डिस्को वो ही लेकर आए थे फिल्म संगीत की दुनिया के अंदर।
2: जी जी बिल्कुल सही कहा, बप्पी दा का जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हमेशा अमर रहेगा।
3: बिल्कुल जी। सर जी,
2: तो किन लोगों के साथ इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आप?
3: यह गीत सबसे पहले तो आकाशवाणी के लिए रहेगा, और हमारे शारदा प्रसाद जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, उदयलाल टेलर साहब जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, सुनील झा जी हैं, और राम बाबू मालवीय भोपाल से हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, और हमारे मित्र हैं गौतम जी हैं, उनके लिए भी यह गीत रहेगा, और आकाशवाणी के लिए भी यह गीत रहेगा कि याद आ रहा है तेरा प्यार।
2: तेरा प्यार, क्या बात है। जी जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना डिस्को डांसर फिल्म से।
3: जी धन्यवाद बहुत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय बागरा साहब, चादर सप्रेम, प्यार नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश के आदरणीय वागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ, आकाशवाणी ईटानगर से। मानवर आप कैसे हैं, आप बताइए अपने शब्दों में।
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए पसंदीदा गाना पेश करता हूँ।
1: जी जी इसीलिए तो वागरा साहब से वार्तालाप करने के लिए हम श्रोता लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, और जब फोन लग जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कार्यक्रम जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से न्यूज ऑन AIR पर सुनते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है, बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ के लिए। और कहिए आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मानवर बस जून का महीना है, गर्मी ही गर्मी है, पसीना ही पसीना है,
0: ओहो
1: चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, और ऐसे वातावरण में जब गीतों की रिमझिम रिमझिम बारिश आकाशवाणी ईटानगर से होती है तो हम उसमें सराबोर होते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं।
0: क्या बात है, कितनी अच्छी तरह से आपने अपनी बातों को रखा। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: बस यूं ही जून का महीना और गर्मी की बात चली है हमारी आपकी बातचीत में,
0: जी
1: तो एक पुराना गाना किशोर कुमार साहब और आशा भोसले जी ने गाया है, आज मेरी जान ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी पसीना ही पसीना। मौसम को देखते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी जी जी जी बिल्कुल मौसम से मिलता हुआ गाना आपने चुना है। और ये कौन सा फिल्म का गाना है?
1: ये फिल्म का नाम है शबाब।
0: ओके जी जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों के साथ सुनना पसंद करेंगे इस गीत को?
1: ये गीत मैं अपने परम आदरणीय मित्र, दोस्त, यार, जो भी कहिए, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा, आकाशवाणी ईटानगर से वागरा साहब को सर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे समर्पित करने के लिए।
1: और साथ में याद करना चाहता हूँ अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा, राजू यादव, पूरन वर्मा और पुष्कर नाथ जी, पुरुषोत्तम जी, राकेश कुमार जी, गोल्डी जी, और साथ में अर्जुन प्रधान जी हैं, और हमारे मित्र हैं टेचर अग्रवाल जी। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ RD वागरा साहब के साथ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना सबाब फिल्म से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जा जा
1: अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो फरमाइश। कुलुम भाई सर।
2: कुलुम भाई।
3: अमोल बसुमतारी को यस।
2: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज तो मैं गाने के फरमाइश के लिए कॉल किया था।
2: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। कौन सा फिल्म का गाना आप सुनाएंगे?
3: नाम है खिलौना फिल्म से हम जानते हैं। इस गाने को सुनना है।
2: और किन लोगों को सुनाना पसंद करेंगे आप?
3: मैं दोस्तों को याद करना चाहूंगा। मेरा दोस्त है भाईकुन मुंडा है, बिमल बसुमतारी है, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंगपी है, और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति है, तुकाराम जाधव है, शिवा लोहार और गजराज सिंह लोधी और हमारे प्रेम मजीत चक्रवर्ती है और अनुप कुमार जी है और चंद्रकांत टाइड है, सुनाराम लालूंग और हमारा दोस्त है गुवाहाटी का, बहुत सारे हमारे अरुणाचल आकाशवाणी और एफएम और ईटानगर सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
2: ओके, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो अमल जी
3: को भी और नूरी मैम को भी और हमारे सभी आरजेसों को भी डेडिकेट कर रहा हूँ।
2: ओके, मुझे और नूरी मैम और सभी आरजेस को डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना
3: है क्या सर? हमारे पे तो बारिश चल रहा है, साल से हमारा पठार में धान भी लगाया हुआ है रहा है, इसलिए धान लगाना सकता है।
2: ओके, ये तो बहुत ही खुशी की बात है
3: जी।
2: आपका जो धान है
3: लगाया है और पठार में गया था, मैं अभी अभी पत्थर से आके प्रोग्राम में कॉल लगाया है।
2: अच्छा,
3: प्रोग्राम को तो सुनते रहना पड़ेगा और प्रोग्राम को तो छोड़ते नहीं है हमारे, अभी भी और एफएम बजते रहते हैं। अभी फिल्मी लहर में अच्छे अच्छे गाना आ रहा है और रेडियो बहुत अच्छा अच्छा गाना दे रहे थे।
2: ओके, आप तो काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर
3: के। काम के साथ साथ प्रोग्राम को भी हर रोज मैं रेडियो लगा के रखता हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा जी।
3: आपका जो एरो एफएम है ना, उसको एफएम का माध्यम से भी सुन सकता है।
2: जी हाँ
3: के माध्यम से भी।
2: ओके, बहुत ही अच्छी बात है।
3: आपके कार्यक्रम को हम हर गुरुवार को आता है हेलो फरमाइश प्रोग्राम, उसको हमारा वो अरुणाचल का ही एक रेडियो स्टेशन आता है वहाँ पे सुनता हूँ।
2: अच्छा,
3: 100.3 मेगाहर्ट्ज़ में।
2: ओके, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए अमल जी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार मेरे दोस्त
0: जी।
1: जी। क्योंकि ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना चाहते हैं ना,
0: जी
1: नहीं तो दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी
0: प्रेम
1: है ना।
0: ही काफी है जी। बहुत ही सही बात कही आपने
1: जी, क्योंकि
0: जी।
1: मतलब इस कार्यक्रम को दिल और जानों से हम प्यार करते हैं
0: क्या बात है, बहुत
1: और
0: बहुत
1: इसीलिए
0: धन्यवाद जी।
1: इसे प्रेम की भावना से फोन लग गया है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी
1: चलिए,
0: जी, अपना परिचय हो जाए।
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है भूमि, आसाम से ताल्लुका है। जी
0: जी, असम से हमारे दोस्त अनूप दा। कैसा है मौसम आपके वहाँ अनूप
1: जी
0: दा?
1: जी
0: मौसम कैसा है आपके वहाँ अभी?
1: क्या बात, मौसम के जानकारी तो मैं आपकी तरफ से आखिरकार जानना चाहता था,
0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: आपने बोल ही दिया। क्योंकि
0: जी।
1: हमारे काल से क्या हुआ, जो वातावरण जो है, बारिश का वातावरण तो आ ही जाता है ऐसे, मतलब तो
0: अच्छा।
1: उसके बाद थोड़ा विंड ब्लो होके चला जाता है, ऐसा ही माहौल
0: ओहो
1: हो रहा है। इतना
0: ओके।
1: बारिश नहीं हो रहा है,
0: अच्छा अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: जब आते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा
0: ओके।
1: थोड़ा,
0: हम
1: लेकिन बारिश होने का एक गजब के बारिश होने का एक
0: चांसेस
1: माहौल
0: है।
1: पैदा करते हैं, लेकिन
0: ओके
1: वो नहीं होता।
0: अच्छा। अभी तक बारिश अच्छा से हुआ नहीं है।
1: लेकिन बारिश से होने से बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत गर्मी है हमारे यहाँ
0: ओके।
1: पे।
0: जी हम
1: और आपके वहाँ के नजारा
0: जी
1: कैसा
0: हाँ,
1: है?
0: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बहुत ही बढ़िया
1: वाह
0: मौसम
1: वाह
0: है
1: वाह, क्या
0: जी।
1: बात क्या बात, हमारे बारिश नहीं हो, थोड़ा दिन के बारिश हो रहा है।
0: अच्छा।
1: तो
0: जी
1: चलिए, आज इसी प्लेटफॉर्म में एक गाने का
0: जी
1: लुत्फ उठाना चाहता
0: हाँ
1: हूँ
0: जी हाँ जी बिल्कुल।
1: जी। और गाने का बोल है, फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का,
0: अफसाना प्यार का। ओके।
1: और गाने का बोल ऐसे है, टिप टिप टिप टिप बारिश शुरू हो गई, माने या ना माने मेरी तू हो गई, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी जल्दी जल्दी टिप टिप बारिश आपके वहां पे शुरू हो, यही हम उम्मीद
1: जी,
0: करते हैं जी।
1: और कुछ ये गाने तो क्या बोलूं, मतलब ये जो अमित कुमार जी है,
0: हाँ जी हाँ जी
1: साथ में आशा भोसले जी है शायद,
0: ओके। अच्छा। जी।
1: और इस गाने को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जिसका नाम है बोके बागरा,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: और
0: जी।
1: सेकेंडली हमारे नूरी मैम के लिए,
0: ओके
1: और बापन आचार्य, बसंती लाल सूर्यवंशी जी, देवजीत दास, हमारे अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, लुकेन्द्र वर्मा जी, और कश्मीर से हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए। तो
0: ओके।
1: चलिए दोस्त, बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू
0: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुप दा।
1: जी।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी। सर,
0: नमस्ते
1: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर जी।
0: सतीश रघुवंशी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप?
1: हम तो बढ़िया सर जी, और मुझे आज बेहद खुशी हुई है कि मेरा फोन 2 से 3 महीने बाद लगा सर जी आकाशवाणी ईटानगर पे
0: अच्छा, आपने
1: जी।
0: ओके ओके जी, आपने नए श्रोताओं को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी
1: जी
0: तरह से
1: बिल्कुल
0: थोड़ा
1: सर
0: गेप
1: जी,
0: रख
1: मैं सोचता हूँ सर कि सभी श्रोताओं को मौका मिले सर जी, और जो भी श्रोता है हमारे तो आकाशवाणी में उनको गैप भी करना जरूरी है सर जी,
0: जी
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: उसमें हमारे नए श्रोताओं को भी मौका मिल जाता है और हमको उनकी आवाजें सुनने को मिल जाती
0: हाँ
1: सर जी।
0: जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, नए श्रोताओं को भी मौका देना चाहिए।
1: जी
0: जी,
1: जी
0: और कहिए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: जी सर, हमारे यहाँ सर कल बारिश हुई है सर, और परसों के दिन भी, और अभी ऐसा लग रहा है सर कि 1-2 घंटे बाद बारिश हो सकती है सर
0: अच्छा, जी, तब तो मौसम बहुत ही सुहाना है, बढ़िया।
1: जी। बिल्कुल सर जी, मौसम ने हमारे इधर पे MP में छिंदवाड़ा में करवटें बदल

0: लिया सर अभी।
1: ओके, क्या बात है। जी जी जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: है।
0: सर जी। और हमको एक बहुत अच्छा लगा सर जी, हमारे यहाँ अभी खेतों में बुआई चालू हो गई सर, मक्के की फसल लगना चालू हो गई है
1: अच्छा।
0: और गर्मी से भी राहत मिल गई सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमको अभी। जी
1: ओके। जी, बारिश होती रहे, हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, ताकि
0: जी
1: आपके जो फसल है वो अच्छा हो।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: सर
1: जी तो कहिए, आज इस सुहाने मौसम में कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
0: जी। सर आप मुझे सुनो दीजिए सर, फिल्म का नाम है अनाड़ी और गीत के बोल रहेंगे सर जी, क्या मौसम आया है, ये वाला गीत
1: क्या
0: सुनाओ सर जी।
1: बात है, क्या बात है।
0: जी इस गीत
1: हाँ
0: में कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना सर जी।
1: जी
0: सर
1: जी जी हाँ जी, बिल्कुल,
0: सबसे पहले तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: और हमारे मित्र हैं सर जी, गुड़बन कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, मुरलीधर ढोले जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, राजू लवानिया जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, और सर सुनने वाले सर सभी को डेडिकेट रहेगा
1: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं? जी। तो सतीश जी, कॉल
0: जी।
1: करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: थैंक यू सर।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते।
0: जी, नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, उज्जैन से हमारे मित्र प्रेम सिंह सिसोदिया, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। बड़ी तेज हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जी
0: अच्छा, क्या बात है जी।
1: बिल्कुल, अभी खेतों को समतल बनाया जा रहा है, सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी हमारे यहाँ पे।
0: अच्छा, बारिश होते ही फसल लगाई जाएगी।
1: हाँ, 25 जून के बाद मानसूनी बारिश होती है ना,
0: ओके जी।
1: जी उसमें फसल लगाई जाती है सोयाबीन की। और जब भरपूर सिंचाई हो, मतलब पानी गिरता है ना, और खेत में पानी हो जाता है, तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, कुएं भर जाते हैं, तो सोयाबीन की फसल कटाई होने के बाद में गेहूं और लहसुन की फसल लगाई जाती है। जी
0: अच्छा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने खेती के बारे में
1: बड़ी
0: जी।
1: मात्रा में फसल पैदावार होती है हमारे यहाँ पे। जी मतलब व्यवसाय के रूप में बेचते हैं हम फसल को, और मजदूरों द्वारा खेतों में काम करवाते हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: हम
0: जी
1: साथ में हम भी काम करते हैं और मोबाइल पर कार्यक्रम भी सुनते
0: कार्यक्रम
1: हैं।
0: भी सुनते हैं, क्या बात है जी। और
1: जी
0: आपके वहाँ
1: हाँ
0: का सोयाबीन वगैरह कहाँ कहाँ तक जाती है?
1: जी, हमारे सोयाबीन यहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में जाती है, मुंबई तक जाती है,
0: अच्छा,
1: और इधर इंदौर से भी आगे तक जाती है। बट हम तो हमारे जो पास में मंडी पड़ती है ना
0: जी,
1: नागदा, वहाँ पर इसकी सेल कर देते हैं।
0: अच्छा, आप लोग वहाँ पे दे देते हैं और वो वहाँ से आगे चला जाता है।
1: हाँ, वहाँ से मतलब बनिए
0: ओके,
1: खरीद के उन्हें आगे सप्लाई कर देते हैं, बट हमें बहुत अच्छा मिल जाता है।
0: अच्छा, जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है
1: जी
0: जी,
1: हाँ
0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने प्रेम सिंह जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: जी गाने के बोले जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथीगर तेरा साथ हो।
0: ओके जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: जी हमारे दोस्त हैं, सबसे अजीत दिलकश हमारे प्रिय मित्र हैं, लोकेंद्र वर्मा जी, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अभिनय संगीता जी, और गौतम राय बोले सर, जो हमें बार बार मतलब कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं,
0: अच्छा,
1: और हम मोबाइल द्वारा कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात है प्रेम सिंह जी। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके
1: जी
0: पसंद का गाना।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी सर, नमस्कार। मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था सर, कोलार रोड भोपाल से।
0: जी। भोपाल से हमारे मित्र राम बाबू जी, कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, और आप सुनाओ सर, आप कैसे हो और
0: जी
1: आकाशवाणी टीम कैसी है सर, और अभी मौसम कैसा है वहाँ का?
0: ओके जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आकाशवाणी ईटानगर टीम भी बहुत ही बढ़िया है और मौसम भी बहुत ही अच्छा, सुहाना मौसम
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: सर। मतलब आधे दिन के लिए बारिश तो इधर भोपाल में भी होती है और
0: अच्छा
1: आधे दिन धूप के लिए रहती है बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि मानसून पूरे भारत में 18 से 22 तारीख तक पूरे में हो
0: जी
1: जाएगा। मान
0: जी
1: लिया खाना वाना खाया और फिर सोचा कि फोन लगा लेते हैं। हमारे मित्र जी ने बताया था, लोकेंद्र वर्मा जी ने, कि बोले वहाँ की रिकॉर्डिंग लगी
0: ओके जी, लोकेंद्र
1: है
0: जी को भी
1: तो
0: बहुत
1: हमने
0: बहुत
1: लगाया है।
0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे मित्र है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी, और आप
0: ओके
1: जो हमारे मित्र हो सर, ऐसी कोई बात नहीं।
0: जी
1: जी
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: हम भी आपके मित्र हैं
1: जी,
0: जी
1: हाँ जी बिल्कुल सर।
0: जी तो चलिए, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए राम बाबू जी।
1: फिल्म है सपने साजन के, उसमें एक गाना है सर, उसके गाने के बोल इस प्रकार है, सच्ची सच्ची कहो तुमने क्या किया, इस प्रकार का एक गाना है सर। उसमें मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है,
0: अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ निकालूंगा।
1: मेरे इस प्यार में सच्ची सच्ची कहो तुमने क्या किया है, इस प्रकार का गाना है
0: अच्छा अच्छा
1: सर।
0: अच्छा ओके जी, हाँ हाँ
1: जी
0: हाँ
1: सर,
0: जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को
1: वो
0: डेडिकेट
1: के
0: करना
1: गाना
0: चाहेंगे
1: तो मैं पूरे दिन गाता रहता है, लेकिन कभी कभी के ध्यान नहीं आता है,
0: जी, हो जाता है
1: भूल
0: हो
1: जाते
0: जाता
1: हैं
0: है।
1: ना।
0: हाँ जी, और
1: हाँ
0: किन
1: जी
0: लोगों को
1: बिल्कुल
0: सुनाना
1: सर।
0: चाहेंगे इस गीत को।
1: जी सर, सबसे पहले आपको
0: बहुत
1: और
0: बहुत धन्यवाद।
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है, और जितने भी सुनने वाले हैं, सभी दोस्तों के लिए रहेगा
0: सभी
1: ये
0: दोस्तों को
1: गाना।
0: आप सुनाना चाहते हैं जी, तो राम
1: हाँ
0: बाबू जी
1: जी
0: कॉल करने
1: बिल्कुल
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय

0: ये बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू होगा हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से, कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

कुछ पन्नों का बदलना बाकी है, उन यादों का संभलना अभी बाकी है। वक्त भले ही आगे निकल गया हो दोस्तों, मगर दिल में वो 90s का जमाना अभी बाकी है। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों वो 90s का दौर भी क्या कमाल का दौर था, जहां हर गाने के लिरिक्स सीधा दिल पर उतरते थे, और अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे कलाकार, जी हाँ दोस्तों आप सभी को याद होगा, नो ऑटो ट्यून बस प्योर इमोशंस। तो चलिए आज फिर से दोस्तों उन हसीन यादों की गलियों में थोड़ा सा घूम आते हैं, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए, क्योंकि हमारी म्यूजिकल टाइम मशीन बिल्कुल तैयार है। लेट्स रिलीव द मैजिक ऑफ द गोल्डन एरा। Stay tuned and let me start with the song. आंख है बरी बरी, only on Arun FM 103.1 megahertz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: चलिए दोस्तों इसी गीत के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन गीत के साथ, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to Rs. 67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये संगीत में सफर एक बार फिर से, और अब हम आपको सुनाएंगे फिल्म जिद्दी का ये बेहतरीन गाना। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को आवाज दी है हारी हिरन और KS चित्रा ने। तो लीजिए पैसे ये खूबसूरत गाना आप सबके लिए।

0: श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अभी अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, उसके तुरंत बाद मिस मी कमान श्रोताओं का समाचार, और उसके तुरंत बाद ताई खामती श्रोताओं का समाचार। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ।
1: This is Morgan Bagra with today's news headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris today as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. President Draupadi Murmu to attend program on empowerment of tribal society through spiritual awakening in Madhya Pradesh. Center to construct over 26,000 kilometers of rural roads in the financial year 2026-27 under the Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana and related rural connectivity initiatives. Home Minister Amit Shah pays homage to the great warrior Queen Rani Lakshmi Bai on her martyrdom day. Defence Minister Rajnath Singh to lay foundation stone for a 10,000 tons aluminium extrusion press at Yantra India Limited Ordnance Factory, Ambajhari in Nagpur tomorrow. Over 1.7 lakh organisers registered their events on the Yoga Sangam portal as part of the International Day of Yoga celebrations on the 21st of this month. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on 15th of July this year. Delhi government makes arrangements of cooling zones for parents and family members at all 97 examination centres for the re-examination of NEET UG 2026. Food Safety and Standards Authority of India direct all food business operators to use only food-grade and corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing activities. In hockey, India defeats Uruguay 3-2 to register their third consecutive win and finish on top of Pool A in the FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeats Netherlands by 95 runs in a Group A match at Headingley in Leeds last night. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: Anja Akashwani Itanagal to yasela sela katarik kamogren samna law hinkin katal moktam to phobajik samra kamking laikong song phola ke problem samepong dangin phalaikong song crime sutka gyachi. Para Prime Minister Narendra Modi or friends ek taiga tai song ka tong sa report mana dat la India na France for economic na industrial cooperation or ring taka thi ra ka Prime Minister Van Saint Gobain chairman na CEO Benoit Bazin na report mana khai tha manufacturing na sustainable infrastructure ring taka thi V1 CEO Alstom fa wan na report mana khai tha ra ka Prime Minister Van Mistral AI founder nang CEO Arthur Mess winner footman da khai tham artificial intelligence ra ka innovation nang dam hedok tang hi ra ka meeting asiam me CGMA group chairman nang CEO Rodolphe Sadefai maritime trade ra ka port global supply chain wan dam hek tang ne ka phai me ka mang da ra ka decision tournament wan Atul Bora minister for panchayat raj and RD Excise Border Protection and Development Assam Pha Uraka Excise Department Assam na Arunachal Pha Ransan Pha Ministerial Level Meeting Kanman na Khaya Thaumun. Meeting lag one Excise Management Uraka Latnat Song Kanta Uraka Revenue Mobilization Uraka Mechanism Capacity Building Ransan Shaut Kanman na Mekta Mata da Khaya Thaumun. Meeting lag one Rune ka State Fashion Revenue to Barayam San Dam Nekta Mata da Khaya Thaumun. Uraka Marbang Trulong Tralong Hinnay Lai Chho Pikrao Da Da Dadla. Raka local MLA Chow Jingnu Namchung ka Ngink Sampha Capacity Building Program Inaugurate Katka Da Khai Thaum GI Nang Post GI Dam Hi NGOs Raka Kung Nam Kupam Organization Sa Kang Raka Stakeholders Kang Nam Saila Baing Inway Namchung ka State Government and GI Product Vi Promote Ka Thi Kamit Da Thao Tha Ka Raka Vi Ka Kolkata Lik Bankers Institute of Rural Development Raka Nabat Vi Nai Kung Ka Da Khai Thaum Sao Program Kan Da Hi Raka Nipko Pare Hydro Power Station Doimukka Public Advisory Issue Kan Kada Khaya Thao Munto Biao Biao Munhi Dem Na Ti Boon Mahi Ti Wak Taif Tka Sama Da Khaya Tha Ka Raka Deputy General Manager Hydro Structure Maintenance and Infrastructure Division ER Taba Gagunka रिजर्वर ती बोल में टी के दायित्व का सामान रखाया था कर वरा कभी का था अथॉरिटीज पियर आर मेंबर्स वरा का लोकल रेसिडेंट सनविन लाइच हो दिखाया को ना था वरा का पावर हाउस वरा का टी लाभ छ म चंग चंग दम सन ने दिखाया था वरा का वन माल ने लाइच हो तन दशन समन रविन लन हेदा था का वरा का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पपुम परे का बैंग इन में शाओ मुक में सा क्लास कैप मन क्लास कैप मुक इन तो पर मरी मत हम सन निकान कान का दादा खाए था उमन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गोंग लग डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यूपिया लग वलंग डीसी पपुम परे लोप संग शेडिंग का एजुकेशन वन डिग्री जत थान हे माय अन वन चौचिन शाओ तो क्लब तो टांग रा का शाओ शाओ उम सन दाम हे नै तिन हे दा था का वरा का विका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फने थाते ग ताई कैंपेन ना था था का अन गोंग लवन नो कमे सबे द खवे सो सान तो मन ये तो रो का एवरा का कमे सन बिट किन फतो साइ फतो हिन करेच का मसाव हे दाम ना था था का रा का ग्लाक ताम स्कॉट मास्टर स्टेट रामला करम गाव यगने दोन जुम दो अंगु तायक मिबांग ताजे मरा वरा का संजय चिन ते सन हिमालयन वुड बेच कोर्स समला नेशनल ट्रेनिंग सेंटर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश वह वन फे का तौदा खाए था उमन हिमालयन वुड बेच वन स्कॉट मास्टर फनेन्या पाने का ताई क्वालिफिकेशन लग खाए था उमन रखा एस सी वोमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप लग इंडिया का नीदरलैंड भी नजीमक लंदन का पे का तौदा खाए था उमन ग्रुप ए लग हेडिंग लेग लीड्स लग इंडिया का चमुरात वय किन नजीमो रंजा का तौदा खाए था उमन ओवर का तलमो लग रखा श्रीमती मंदना वकनु मोकम ब्रिटेन रंदम का शेफाली वन ओपिंग मोक लंदन दम का दखाए था हमरा का नीदरलैंड वन चंबुरा वये मो क्या मो कंपन रन चा का दखाए था हम क्या मनन ओवर का बोल का सम्राट इंडिया रामला श्री चरानी का विकेट कंपन ला का दखाए था हमरा का शेफाली का सम्रा का नंदनी शर्मा का किए हमरा का श्रीमती मंदना वन प्लेयर ऑफ द मैच थान का दखाए था हमरा का सौ मलक मार्किंग लाइक सौ फाइव तो कबों क्रॉन का दंजाय जाए मोहन गया

जी बोई नए जब बोई नए।

0: จอมนังอคิงนำนาลีในสตูดิโอไม่จีกันมาว่าฟ้าป้อยเนี่ยจะหั่งมันเนี่ยคำเตะคำตีเฮาที่ใครไม่สุดยอดหอ
1: तो श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू होगा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अपडेट सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों जून का महीना चल रहा है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है लेकिन हमारे बॉलीवुड का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हाई है। सिनेमा हॉल से लेकर ओटीटी तक पूरा एंटरटेनमेंट मार्केट गर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और लेते हैं बॉलीवुड की ताजा चटपटा और गर्मा गर्म खबरें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की धमाकेदार टक्कर की। पिछले हफ्ते थिएटर्स में आई एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल मूवीज इम्तियाज अली की नई फिल्म मैं वापस आऊंगा सिनेमा में चल रही है। दिलजीत दोसंझ, सरवरी और वेदांग रायना की एक्टिंग ने लोगों का दिल चू लिया है। इमोशन से भरी इस फिल्म की कमाई अब 10 करोड़ का मार्क टच करने वाली है। लेकिन इसके बिल्कुल सामने खड़े हैं वरुण धवन और देवी धवन की जोड़ी। उनकी फिल्म हे जवानी तो इश्क होना है अपने सेकेंड वीक में चल रही है और वर्ल्ड वाइड इसने 70 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। सॉलिड कॉमेडी और वरुण मुरनल की जोड़ी ने ऑडियंस को बहुत हंसाया। अगर अभी तक आपने इन दोनों में से एक भी मूवी को नहीं देखा है तो अपने आसपास के थिएटर्स में जाइए और जरूर देखिए ये मूवी। और हाँ दोस्तों, साउथ से आई रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेडी ने तो आग लगा रखी है। 13 डेज में 400 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके ये साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई है।

चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो आ रही है हमारी ग्लैमरिस्ट जैकलिन फर्नांडिस से। यस जी हाँ गाइस, जैकलिन अब आपको डराने के लिए बिल्कुल तैयार है। रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी करियर की पहली फुल फ्लेज्ड आउट एंड आउट हॉरर फिल्म साइन कर चुकी है। हालांकि उन्होंने पहले भूत पुलिस की थी, पर बॉस वो हॉरर कॉमेडी थी। ये वाली एकदम शुद्ध डर से भरी हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसमें गाने और देर सारे इमोशंस भी होंगे, और साथ ही फिल्म का टीजर और एक सॉन्ग तो शूट भी हो चुका है। बड़ा पर्दा, दबदबा, दिल धड़कन और जैकलिन, मजा आने वाला है दोस्तों, जरूर देखना ये मूवी। वैसे जैकलिन के फैंस के लिए एक और गुड न्यूज है, उनकी बड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल इसी हफ्ते 26 जून को रिलीज हो रही है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सो डबल ट्रीट फॉर द जैकलिन फैंस।

और चलिए अब थोड़ा OTT प्लेटफॉर्म्स का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग थिएटर्स नहीं जाना चाहते उनके लिए घर बैठे एंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम है। दोस्तों, आपकी प्यारी मिश्रा फैमिली फिर से लौट आई है बॉस गुल्लक सीजन 5 सोनीलिप पर स्ट्रीम हो रहा है और लोगों के रोना धोना हंसना हंसाना सब शुरू हो चुका है। वही मिडिल क्लास बातें और वही मजा। इसके अलावा करिश्मा कपूर की एक बहुत ही शानदार न्यू क्राइम थ्रिलर ब्राउन भी Z5 पर धूम मचा रही है। सस्पेंस के शौकीन लोग इस ब्राउन सीरीज को जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप बॉलीवुड अपडेट्स। थिएटर्स में रोम कॉम है, सीरियस ड्रामा है और घर बैठे OTT पर प्यारा सा फैमिली ड्रामा भी। और चलिए दोस्तों, अब हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम सुनाएंगे आपको कुछ एक बेहतरीन गीत। जी हाँ दोस्तों, जिसे गाया है हिमेश रेशमिया ने और ये गीत है, आई थिंक आप सबको ये गीत बिल्कुल याद होगा।

0: और दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। आई होप कि इस कार्यक्रम में बजे और जितनी भी गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें आपने सुने, आप सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया है। लेकिन अब समय हो चला है वांचू श्रोताओं का समाचार का। हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से।
1: इज आकाशवाणी ईटानगर जूनलेन मनी बन आज 7 तारीख बृहस्पतिवार ई पोहसो आजम बाजी पुंजी मिनट मुगम लक्यम वांचो जायका पा कपई पोमा कहवा पहाय फाले वांका वांगसु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि इंडिया हिया फ्रेंड्स डे निपा इकोनॉमिक हिया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होमो खोसत जु तामताई ले आचन आजुक अं आजों अमों क्या लम मा पेरिस होनुई मा फ्रांस डेस अं क्या आचों अलो बिजनेस लीडर्स थम फै तबी जौ हाई लेवल मीटिंग टू सो आसो अफोय। प्राइम मिनिस्टर मोदी ए हजा मा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हिया ग्रीन मैन्युफैक्चर हिया सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होमोकोसत मो वन ले सेंट गोबियन होथम चेयरमैन हिया सीईओ अजब के मी बेनोइट बाजिन फै स्मार्ट मोबिलिटी हिया रेल मॉडर्नाइजेशन मो वन ले अल्स्टोम होथम सीईओ फै आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हिया रेस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस मो वन ले मिस्ट्रल एआई होथम को फाउंडर हिया सीईओ आर्थर मिंस फै बोमा मेरीटाइम ट्रेड टी लम थाले जो ताई पोर्ट मॉडर्नाइजेशन हिया रिसाइलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन होमोकोसेट मो वन ले सीएमए सीजीएम ग्रुप होथम चेयरमैन हिया सीईओ अजब क्या मी रोडोल फे साडे फै ले गोजोंग वन। अरुणाचल प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोना मेन ए मनी आसम स्टेट पंचायती राज आरडी एक्साइज या बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर अतुल बोरा बोमा आसम या अरुणाचल प्रदेश नि जौ एक्साइज डिपार्टमेंट आचों आलो ऑफिसर्स थम्फैता मीटिंग टू सो आसो अफोले हजा टू सो मा स्टेट नि बा मा एक्साइज मैनेजमेंट हहु हलप थाले जों ताई आबा अवां अंक्या रेवेन्यू मोरसत एनफोर्समेंट मेकानिज्म हिया कैपेसिटी बिल्डिंग निंग्या होमोखोसत हानपक मक्या होशम जु तामताई ले आचाक आजों अंक्या मो वन क्या बो मा स्टेट नि फै तमबै ले ख्वाक्तामा अपोंगसौ तैक्या तोय ताइजांग जाय फो जिंगेजौ ले आमाइ पुकु मताता फै हित ले यौ आसाम मथम ले मोकसा आजों मुं हा औ ले तें फन्दो। नामसाई हो निजांग एम एल ए चाउ जिंगनु नामचुम ए मनी नामसाई हो नुई मा जी आई मोटसत मा मोकसत ले ngo taike NGOs farmer producer organization siya momomo stakeholders tham hanpak ma ang GI hiya post GI motosat zuba ma apu ahole koton ang ni azam hanpak ma angot asoket ta capacity building program tu so hoka dable ml namchum e tu so ma van kya jang van ka je ma state government GI product pho mi ha to apu apuk ang khale yo among tai pu le van le bo ma chi e haja program hale angota so kya han pak ma west bengal kolkata ho noi to kya nabard ho tham ang kya a chong kya training institute bankers institute of rural development BIRD ho tham asu pu le a chok asan hu kya ka chu ngai van le पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थम ए मनी यूपीआ हो नुई मके डीसी कन्फ्रेंस हॉल मा ता टू सो अंगोट आसो अंक्या ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मखंग ए डिस्ट्रिक्ट मखंग ए क्लास बन हिया क्लास बन आनी पोरख्या मा अथकले मैले लाइंग अक पास क्या शको नसम अंग फेलिसिटेशन को अतोनले डिस्ट्रिक्ट डीसी लोपसंग सेरिंग ए हमा वन के जंग वन मा लाइ मानपु ले लाइ डिग्री कपलो क्या अंगो लन लन न्याक क्या मंचंग अब लाइ नौसम ए पंगनुलम मा चोक मान थो लन क्या अंगति न्याक पु ले वन ले बोमची ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मो वन क्या मा हजा स्कीम देश मजैता होनुई तो शको नौसा यंगचंग मा वोक मबै लंग ला आवत क्या बोमा शकोनोसम अंग लाइंगक ano ang chitam chisan kya nying kya toy tay ngai dong le tay kya zingi jau le amai puku ma ang government of india e song kya ta a chung kya jau social campaign motto chang tay pu le vanazele arunachal pradesh mukhang kemi hok azok scout masters karam gao yagnya don jumdo angu take mibang Taje Mara hiya Sanjay Chinte am chun chun le Madhya Pradesh State Panchmari Honui ma National Training Center NTC ma angot kya Scout tham Himalaya Wood Badge Course HWB Training ha maizang ma le vai landwa. Kaho ma ajang waja HWB Training School photo Scout units ho tham ako akampuku ma Scout Master tham zong ma achong kya qualification chang le. ICC Women's T20 World Cup shako am cricket baupan tu sok ma maja heading le honwe ma abau geta group A match ma India Netherlands desh to puliban aga run makhang lat le. Match ma India hovang ma betting hon an kya Smriti Mandana Puzam Ban Ali Ran Boma Safali Verma Punyi Ban Aga Ran Zingkya Ma Akhoan Kya Sa Over Ma Aga Wickets Amatantokle Ho Anyi Aku Ran Zingle Boma Hajatokai Ang Azong Kya Ma Netherlands Des Team Tham Ban Anatpun Azam Over Ma Vai Hom Pangnu Wicket Amatan Kya Hota ban ali ran vai zingle chokle boma kahoma ajangba match ma smriti mandana player of the match prize kaple kaho ivai
0: Sota dosto aap sun rahe the vancho sotao ka samachar akashvani tanagar ka arun fm 103.1 megahertz pe jahan hoti hai dil se dil ki baat aur agar इस कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर और अब आइए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से हिंदी फिल्म सॉन्ग के साथ

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे इदुम इसमी श्रोताओं का समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से।
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे इडुम इसमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जिहोलोयो ब्रोलिनी एतानिची इडुम इसमी आहोला किजी दारगालंबो। Prime Minister Narendra Modi ma ona France ma chi Paris atikone Bernard Bajin ma chi Chief Executive Officer CEO done Chairman Saint Gauvin go chorga gane Ayon bro jota arga wachi poa chichaga chi maho Alstom Company ma chi Chief Executive Officer go chorga gane Rail Lapra ge Puntal chi chi dena wachi poa chichaga da ahoga Prime Minister me Mistral AI Ajin Hetambega Aidone Chief Executive Officer Arthur Mansigo Chorwaganem AI Chinjone Chipoa Chichagapa CMA CGM Group Machi Chairman Rodolf Sadego Chorwagane Anji Gepu Chipoa Chicha Omachita Ahoga Deputy Chief Minister Chonamen Mepuni Asamachi Panchati Raj Rural Development Excise Border Protection Done Development Minister Atul Bora go choga gane anji ele amme thuga jimi tawji poa chichaga ma Assam ne Arunachal Pradesh government excise department ma che ajalam bro ukho gimbe o bada ahoga rumi done pranjata atikani me joga oda ne chakani me amboga te o bada ahoga GI anji he government me drop ga oda ne namsai MLA Jo Jingmu Namsum Mepune Namsai Atikone GI Anjir Chipua Meeting Chinaga Maho Lagane GI Chipua Apitea Done Kisha NGO Anumbro Lazo Cha Program Akapugamba Aipa O Bada Aoga West Bengal Kolkata Machi Bart Done Nabart Me A Program Akanagake Banetando Prabhujidane Emile Me Lawa Bada Aoga Ayadu Machin Brudone Machi Akagane Embota Mama Dem Machi Machi Ahizgao Maho Dem Apollo Machangu Anumajia Imume Aprakubuya Agujim Nane Duimu Nipko Pare Hydro Power Station Machi Deputy General Manager Engineer Tabagagume Lagada Aoga Department Arunda Machi Azalambo Panchayat Lira Nambo Done Kisha Auda Imwanambo Me Achipo Antikachimu Alajiji Nane Nipko Machime Lahugane Ali Lahaya Pahuane Abu Iji Adungi Yobayo Une Ashungada Lagada Ahoga Pahumpur District Machi Class Hune Huluni Machi Pramra Azo Ahitoya Yaku Alambrohe Buni Yupia Dish Office Mane Ezaram Brahu Tapahu Price Tone Certificate Azopra Hangabada Ahoga बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कमाने अली हगा मा दिशी लोपसंग सेरिंग लापंगे आजालंबो उखो की ओं बदा लाफोगा करम गाओ यान्या दन जोम दो आंगो ताएक निबंग ताजे मारा दोने संजय चिंते लापंगे अरुणाचल प्रदेश मचे स्काउट्स मास्टर ताहरमैन मध्य प्रदेश नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एनटीसी माने Himalaya Wood Page Course Azo Ahitondoga Bada Ahoga School Mamachi Scout Unit Anumbro Ladenga Naoge Banem Himalayan Wood Page Course Ahiga Jida Lahoga Yako Lumbro Chi T20 Cricket World Cup Ma Buni India Me Hitting Le Leeds Atikochi Match Mane Netherlands He Kinyahu Magaran Mane Anega Bada Ahoga India Me ऐहा होगा ने अन्य ओबामा मंगा विकेट ए बोपाया ने मौके ने खिंचरान होतेगा बामा नेदरलैंड में जिगा ने हुलु ओबार तो ने कासो बोलमा मालु हुलुपी रान होतेगा बने एम ए बोगा बचिदा लगा इंडिया मचे स्मृति मंदना मै प्यादो यहू कापी रान हुत्या महो सफली वर्मा मैम मंगा हु मंगा रान हुत्या बाचिदा लगा श्री चरणी में विकेट कापी सफली में कासो नंदिनी में विकेट खानी अबगा बच महो मंदना ची प्लेयर ऑफ द मैच हंगा बदा आहुगा एतनी इदुमिस्मी आहो अली माओ दुबाए
3: एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाले ईद मिश्मी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनी हेंदो मार्टिन मिमिची अचाशे ची अहुजी
0: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ईद मिश्मी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17 यानी मेरे अलविदा करने का वक्त, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबका चहीते आरजे आरजे दिंदो मंच जो बनी रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और दोस्तों आई होप कि आप सब ने उतना ही इंजॉय किया जितना मैंने आप सबके साथ। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। और इससे पहले कि मैं यहां से निकलूं आप सबको बता दूं आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता एचएम ब्यूसन। तो इसी के साथ अब मुझे यानी आपका घोषक आपका रेडियो साथी आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

penrup exercise management kau nang nai au ucem lam me pailai re peteng me kau nang areng setai re rafan te berju meeting nang nong nai re exercise policy pe tehong re state own resource pe tapang modop rafan te per me state nai tungkang nang rehom peseng din me dop walang hing re ru re ram te nam sai hawang emle chau jingnu nam chom re gi kamwang sumun jang re ngo stam manai farmer producer organization stam mara parma balang stakeholders mai ang mangro gi and post gi initiatives kaunang sarum ram capacity building program po manai sa nam sai ha na tafang de परजु नामचोम रु मसौ फान बायतनांग स्टेट सुलकाय र जीआई प्रोडक्ट्स तांगवांग प तचेन म काम सुम रु ngoro te आरो नाबार्ड वन एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जंग र कोलकाता बेस्ड बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट र प्रोग्राम प अहु म त थुंखा म चाउ जिनु नामचोम र रल तो तो दुईमु हावंग नेपको वन पारे हाइड्रो पावर स्टेशन र सिंगमु वंग मैम आरेंग रुंगरांग कुत प्रजुमो पनर मछु रंगसु बलांगलांग नै रंगसु न्यो हाई कौ पजु पारे रिजर्वर वंग खाम प खुली सि मोरो त हाइड्रो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन जनरल मैनेजर इंजीनियर ताबा गागुंग र फानलो नाओ पारे खामा लिंगनांग रंग प अलिंग जिन खाम हाइड्रो प्रोजेक्ट वंग खाम लेवल प चेंची मा हजंग प्र खाम पंचायत वलांग हेर नै लोकल मै हेर र इर आरेन रुंगलांग प पारे दाम रिजर्वर कोनांग तोंग बाइर मै हेर मनै पारे खामा होंग कौनांग तोंग र मै हेर मरा परम पावर हाउस को नंग तोंग रो महेंग म नरी म ततात नंग रंग मोरो ऑथोरिटीज महेंग मने पंचायत वालंग हे मोरो खेप द परियु रंगचु बलंग नंग रिजर्वर को नंग मई पारे खमालिंग नंग ngam nga लोट नंग नई तेग नंग कारंग जंग मु मोरो दो पब्लिक एडवाइजरी नंग महेंग म रो त आरो इर आरेंग एडवाइजरी रुंगलांग प तानमु म फायसिंग कयंग रजु मामा हनंग जांगचिंग रो त पापुम परे डिस्ट्रिक्ट वंग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जखुंग म डिस्ट्रिक्ट वंग क्लास 10 नै क्लास 12 टॉपर्स जेसी लेवन साम मनेसा डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल यूपिया नंग प्राइज कु त परजु पापुम परे डीसी लोपसंग सिरिंग र मसौ फान बायते नंग एजुकेशन प डिग्री म मरो दे सेरंग जमो प्रमतै एजुकेशन र लेवन सा एप्टीट्यूड नै स्किल प तचेन म काउ नंग पर्सनलिटी डेवलपमेंट यंग मकाउ नंग होहाय कुरंग रार मोरो त डीसी र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मान फान बायते नंग आचुंग सुर कई र इर आचुंग सोशल कैंपेन स्कीम प तफंग रोरे नंग मुंगवांग बले बाय हाताम नंग फीमेल इन्फेंटिसाइड इशूस सो नई पर म जेचे साम लिक तफान मु सो प राइट राय कुरंग म फंड औ डीसी र फंड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एनटीसी पच मारी मध्य प्रदेश नंग हिमालयन वुड बेस कोर्स ततुंग तो प्रजु अरुणाचल प्रदेश वंग स्काउट मास्टर वाकरोक कारम गांव रनई यिग्निया डॉन रेरा जुमदो आंगु तायिक मेबांग परम ताजे मारा नै संजय चिंते सियंग र कोर्स प तथुम तुंगो रोत स्काउट मास्टर हेंग म हिमालयन वुड बेस कोर्स प अजुंग कोर्स जंग र आरो कोर्स मा म स्काउट मास्टर हेंग र स्कूल ताम नंग स्काउट यूनिट्स प नरी म ट्राई रु मो रोत मचोबलंग इंग्लैंड मुंग नंग ICC Women's T20 World Cup Tour nang manairang ja headingle nang India team nei Netherlands team tung na tu te preju India re first batting kuri rau 20 overs nang 209 runs man rau 5 wickets out jang te Smriti Mandana re 74 runs man te par ma saf

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के तीसरे और दिन के आखिरी ट्रांसमिशन पर। दोस्तों, शाम कभी सिर्फ दिन का अंत नहीं, कभी कभी ये पूरे दिन की कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना होता है, और इसी खूबसूरत पन्ने पर आपका स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग ईटानगर, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं कि आप ठीक हैं। अभी घड़ी में शाम के 4:30 होने को हो रहा है। धूप अब धीरे धीरे नरम हो रही है, ट्रैफिक अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, और हम लेकर आ गए हैं आज के दिन का तीसरा ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी आरजे मांश, आपका हम सफर, और अगले कुछ घंटों तक हम साथ मिलकर इस शाम को और भी यादगार बनाएंगे। दोस्तों, आपसे एक बात पूछूं, आज दिन भर की भाग दौड़ में क्या आपने खुद के लिए 2 मिनट निकाले? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अब निकाल लीजिए, क्योंकि ये वक्त है थोड़ा सा मुस्कुराने का, थोड़ा सा गुनगुनाने का, और थोड़ा सा दुनिया को साइड में रखकर अपने दिल की सुनने का। तो चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं, चाय की पहली सिप ले रहे हो, या फिर किसी खास इंतजार में हो, ये शाम अब होगी आपके नाम। वॉल्यूम बढ़ाइए, मूड सेट कीजिए, और तैयार हो जाइए बेहतरीन संगीत, दिलचस्प बातें और पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत्य एवं तकनीकी अभियंता ताना आतु, और मैं आपकी आवाज आपकी साथी विंदुम दिंदो मांज। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं गुड इवनिंग ईटानगर का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में पहला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म माय नेम इज खान से ये बहुत प्यारा सा गीत सजदा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस गीत का आनंद लेंगे, साथ ही अपने साथ कुछ पल आराम से शांति से बिताएंगे।

दोस्तों, शाम का एक अलग ही जादू होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सूरज धीरे धीरे आसमान के किनारे उतरने लगता है, तो लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें याद दिला रही हो कि अब थोड़ा सा रुकने का वक्त आ गया है। कभी गौर किया है आपने, सनसेट कभी जल्दी में नहीं होता, वो आराम से बदलता है रंग अपना। पहले सुनहरा, फिर नारंगी, फिर गुलाबी और धीरे धीरे आसमान में घुल जाता है। और शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाती है, हर दिन एक रेस नहीं है, हर शाम एक रिमाइंडर है कि हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी यहाँ है। अगर मुमकिन हो तो आज शाम थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा वॉक में निकलिए, फोन को पॉकेट में रखिए, हवा को महसूस कीजिए, पेड़ों की हल्की सी सरसराहट सुनिए। ईटानगर में इसका बेस्ट स्पॉट है हमारा इंदिरा गांधी पार्क। आसमान के बदलते रंग को देखिए, क्योंकि कभी कभी जो सुकून हमें हजार नोटिफिकेशंस नहीं दे पाते, वो सिर्फ 10 मिनट की एक शाम की वॉक दे देती है। और फिर घर लौटकर उन लोगों के साथ बैठिए जो आपके दिल को दिन को मायने देता है। फैमिली के साथ एक कप चाय, दोस्तों के साथ कुछ हंसी मजाक, या फिर किसी अपने के साथ दिन भर की छोटी बड़ी बातें, यही तो वो लम्हे हैं जो दिल को रिचार्ज करता है। हम अपने फोन्स को चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन अक्सर अपने दिल और दिमाग को चार्ज करना भूल जाते हैं। शाम वही वक्त है जब हम खुद को फिर से बाहर कर सकते हैं, थोड़ी सी शांति से, थोड़ी सी मोहब्बत से और थोड़ी सी अपनों की मौजूदगी से खुद को भर सकते हैं, ताकि जब कल सुबह एक नया दिन शुरू हो तो हम सिर्फ तैयार ही ना हो बल्कि अंदर से भी ताजा महसूस करें। तो दोस्तों, इस खूबसूरत शाम को यूं ही गुजरने मत दीजिए, इसे महसूस कीजिए, इसे जिए और इसके रंग को अपने साथ लेकर चलिए। अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ दोस्तों, चलिए सुनाते हैं आपको एक बहुत ही मजेदार सा गीत। हम सुनेंगे ओ माही वे, अरिजीत सिंह की आवाज में, जिसे बनाया है इरशाद कामिल ने। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस गीत का बेहद आनंद लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार एवं अंग्रेजी समाचार, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा एवं दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अरुणाचल प्रदेश स्थित निपको के पावर हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख द्वारा आज एक जन सूचना जारी कर निवासियों को सभी संबंधित लोगों से कहा है कि आने वाले मॉनसून के दौरान पारे रिजर्वेयर्स में अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। राज्य के 6 स्काउट मास्टर्स ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुड वेज कोर्स पूरा किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात ग्रुप ए में मैच गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व भी करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेरिस आगमन से पहले यहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से फ्रांस में रह रहे रमेश भावसार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए बदलावों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस के लोगों के बीच भी उनके प्रति सकारात्मक सोच देखने को मिलती है। भावसार जी ने आकाशवाणी से कहा,
2: यहाँ पे 15 साल से ऊपर हो गए और मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर 2014 से जो उन्होंने कार्यभार संभाला है, और भारत में मैं अभी हाल ही में गया था तो भारत में देखा कि कितने सारे बदलाव आए, वो देख के बहुत खुशी मिलती है।
1: रमेश भावसार के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़ाव मजबूत किया है, जिससे प्रवासी भारतीय स्वयं को भारत के और अधिक निकट महसूस करते हैं। महेश सोपड़े।
0: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने असम सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास, आबकारी, सीमा सुरक्षा एवं विकास मंत्री अतुल बोरा और दोनों राज्यों के आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी तालमेल बढ़ाने, बेहतरीन तौर तरीके साझा करने, कानून लागू करने के सिस्टम को मजबूत करने, गैर कानूनी व्यापार को रोकने, राजस्व प्रशासन को बेहतर करने और संयुक्त पहलों में समय समय पर समीक्षा के जरिए भविष्य में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में उप मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य होने के नाते साझा हितों और जिम्मेदारियों से जुड़े होने के कारण नई चुनौतियों का सामना करने और गुड गवर्नेंस सुनिश्चित और लगातार बैठक पर जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश स्थित निपको के पारे हाइड्रो पावर स्टेशन दोईमुख द्वारा एक जन सूचना जारी कर निवासियों और सभी संबंधित लोगों से कहा गया है कि आने वाले मॉनसून के दौरान पारे रिजर्वेयर से अतिरिक्त पानी को कंट्रोल करके छोड़ा जा सकता है। हाइड्रो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर इंजीनियर ताबा गांगोंग ने कहा है कि पारे नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से रिजर्वेयर में पानी का लेवल बढ़ सकता है। उन्होंने पंचायत सदस्यों और स्थानीय निवासियों समेत सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस एडवाइजरी को पारे डैम रिजर्वेयर एरिया और उनके आसपास रहने वाले ग्रामीणों, पारे नदी के निचले किनारे और पावर हाउस के आसपास रहने वाले लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाए। आदेश में लोगों से यह भी कहा गया है कि वे मॉनसून के दौरान रिजर्वेयर्स के पास नदी किनारे जाने से परहेज करें। अरुणाचल प्रदेश के 6 स्काउट्स मास्टर काराम गाओ, येगियन दोन, जुमदो आंगो, तायंग मुबांग, राजे मारा, संजय चिंते ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित हिमालयन वुडवेज कोर्स पूरा कर लिया है। हिमालयन वुडवेज स्काउट मास्टर के लिए सबसे बड़ी योग्यता और उन स्कूलों में स्काउट यूनिट्स को प्रभावी ढंग से नेतृत्व और प्रबंधन करने के लिए तैयार करता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौते में तत्कालीन संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार करने किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करेगी।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से
0: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लुबेतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,009 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना की प्रगति का आंकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले में रायांगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटब्रदा में ब्रह्म राजकुमारी की मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायांगपुर पुलिस जिले के लिए भी उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसनी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के
0: हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से पराजित किया। भारत ने पुल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित किया। इससे पहले घाना ने पनामा को 1-0 से रोमांचक जीत दर्ज कर और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए मैच में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagra. Prime Minister Narendra Modi is holding a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Prime Minister Modi will attend the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron in the evening. He will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The Viva Tech Summit is Europe's largest technology and startup event, where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation ecosystem and technological advancements. India will have the largest national pavilion at this event of Viva Tech Summit, a fitting symbol of the enormous potential for partnership between the Indian and European innovation ecosystem. The Prime Minister is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. The centre will construct over 26,000 kilometres of rural roads in the financial year 2026-27. According to the Ministry of Rural Development, more than 18,900 crore rupees have been earmarked for the construction of rural roads under the Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana and related rural connectivity initiatives. A high-level review meeting was held to assess the progress of rural road connectivity projects. The meeting was chaired by Rohit Kansal, Secretary, Department of Rural Development. Senior officials from several states including Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and others participated in the meeting. The Secretary laid special emphasis on providing last-mile connectivity to all remaining unconnected habitations. President Draupadi Murmu has begun a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha today.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नौक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम नौक्ते भाषा में समाचार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और स्वागत करते हैं आप सभी का इवनिंग ड्राइव के हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन संगीत से। फिल्म धड़कन से सुनते हैं

How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: Dil se dil tak baat pahunchi, milte milte sanam.
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, एक सवाल पूछूं आपसे। आखिरी बार आपने कुछ ना करने के लिए वक्त कब निकाला था? मतलब सच में कुछ भी नहीं, ना फोन स्क्रॉल करना, ना ईमेल चेक करना, ना किसी का रिप्लाई देना, ना किसी का इंतजार करना, बस कुछ पल के लिए खुद के साथ रहना। अजीब लगता है ना? आजकल हम इतने बिजी हो गए हैं कि अगर 2 मिनट भी खाली मिल जाए तो हमें लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। लेकिन शाम का वक्त शायद इसीलिए इतना खास होता है। दिन भर की दौड़ के बाद जब ईटानगर की पहाड़ियों पर धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है, जब हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है और शहर का शोर भी थोड़ा सा नरम पड़ने लगता है, तब लगता है कि जिंदगी हमें कह रही है अब थोड़ा रुक जाओ। हर वक्त प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बादलों को देखना भी प्रोडक्टिव होता है। कभी चाय की एक प्याली के साथ चुपचाप बैठना भी प्रोडक्टिव है। कभी फैमिली की बातें सुन लेना या दोस्त की बिना वजह वाली कहानी पर हंस देना भी प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे बैंक अकाउंट को नहीं, हमारे दिल को अमीर बनाती है। और दिल का अमीर होना भी उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी में आगे बढ़ना। तो अगर आप इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, तो घर लौट रहे हैं, या बस शाम का मजा ले रहे हैं, तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि आज की शाम में कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जिएंगे। क्योंकि जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे अक्सर वही होते हैं जहां हम किसी रेस में नहीं होते। और उसी खूबसूरत ख्याल के साथ चलिए सुनते हैं हमारी इवनिंग ड्राइव का अगला गीत, जो शाम के इस सुकून को और भी हसीन बना देगा। आपके लिए लाए हैं फिल्म कल हो ना हो से ये गीत कल हो ना हो।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: दोस्तों, हमारे इवनिंग ड्राइव के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है शाम की महफिल का, जहां हम आपको सुनाएंगे कुछ सोलफुल सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स, जिससे आपका दिन का एम्बियंस बिल्कुल हो जाएगा ताजा और मजेदार। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आज के इस शाम की महफिल का पहला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो है फिल्म कलंक से। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक कलंक। चलिए सुनते हैं साथ में।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है, सुबह उम्मीद देती है, दोपहर मेहनत मांगती है और शाम हमें हमसे मिलवाती है। दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ और हम प्ले कर रहे हैं हमारा सबसे खास कार्यक्रम शाम की महफिल। अगर आप इस वक्त ईटानगर की सड़कों पर हैं, घर लौट रहे हैं या ऑफिस का दिन खत्म करके थोड़ा सा

सुकून ढूंढ रहे हैं तो ये अगला कुछ वक्त सिर्फ आपके लिए है। मुझे लगता है कि शाम दिन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। सुबह की बहुत बात होती है, राइज एंड शाइन, वेक अप एंड हसल, अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म्स, ये सब। लेकिन शाम किसी कंपटीशन में नहीं होता, वो किसी से रेस नहीं करती, वो बस आती है और कहती है जो हो गया वो हो गया, अब थोड़ा सा जी भी लो। और शायद इसीलिए मुझे शाम बहुत पसंद है। आप देखिए ना, सुबह जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे पास प्लान्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, डेडलाइंस होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन शाम तक आते आते हम सिर्फ इंसान रह जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो थक गया है, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा सुकून चाहता है, एक ऐसा इंसान जो बस घर पहुंचना चाहता है। दोस्तों, हम आगे और बात करेंगे, लेकिन इस बीच, क्योंकि ये कार्यक्रम ही है सोलफुल और सूदिंग म्यूजिक का, तो जरूरत है कि हम इस बीच एक गीत भी सुने। आपको सुनाना चाहती हूँ कोक स्टूडियो की तरफ से आफरी आफरी।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे दिन भर हमसे इतना कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, हमारे इतने सारे डेडलाइंस होते हैं, कितने मीटिंग्स होते हैं, कितने काम होते हैं, उन सब के बाद जब शाम आ जाता है तो कुछ नहीं रहता। बस एक इंसान रह जाता है जो थोड़ा थका हुआ है, जो बस सुकून चाहता है और घर पहुंचना चाहता है। दोस्तों, घर घर सिर्फ एक जगह नहीं है। कभी-कभी घर एक इंसान होता है, कभी-कभी एक आवाज, कभी एक कप चाय, कभी एक पुराना गीत, और कभी-कभी खुद हम ही अपना घर होते हैं। दोस्तों, आजकल हम सब एक अजीब सी दौड़ में भाग रहे हैं। हर किसी को कुछ पाना है, हर किसी को कहीं पहुंचना है, लेकिन कभी-कभी रुक कर ये भी देखना चाहिए कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं मिलती, लेकिन शाम का वक्त उन चीजों को याद करने का भी तो है जो हमें मिल चुकी है। एक और दिन, एक और मौका, एक और सनसेट, एक और शाम। और यकीन मानिए, ये छोटी चीजें बिल्कुल छोटी नहीं होती। अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं तो जरा आसमान की तरफ देखिए, शायद सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा होगा, शायद बादल अपना रंग बदल रहा होगा, शायद हवा में थोड़ा ठंडक घुल रही होगी जो सिर्फ शाम के पास होती है। प्रकृति हर शाम हमें एक मास्टर क्लास देती है। सूरज हर दिन डूबता है, लेकिन हर सुबह फिर से उगता भी है। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे शाम और शाम की अनोखी खूबसूरती के बारे में, लेकिन इस बीच में चलिए सुनते हैं एक गीत। फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से पीलू।
1: लाइक

दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूरज की, जो हर दिन डूबता है लेकिन हर सुबह फिर से उगता भी है। कितना खूबसूरत संदेश है ना। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन वैसे नहीं जाएगा जैसे हमने सोचा था, लेकिन कल फिर एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी, और इसी उम्मीद का नाम जिंदगी है। दोस्तों, शाम सिर्फ अकेले बिताने के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे लिए मायने रखता है। कभी सोचिए, हम दिन भर कितने लोगों से बात करते हैं, कॉल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, लेकिन कभी कभी सबसे जरूरी लोगों से सबसे कम बात होती है। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों? हमारी माँ पूछती है दिन कैसा था, और हम कहते हैं ठीक था, बस बात खत्म। लेकिन शायद आज नहीं, आज घर जाकर थोड़ा ज्यादा बात कीजिए। अपने पापा से पूछिए उनका दिन कैसा था, भाई बहन से हंसी मजाक कीजिए, दोस्तों को फोन कीजिए, भले ही कोई काम ना हो, अपना दोस्त होता ही किस लिए है, बिना काम के कॉल के लिए, है ना। तो अपने दोस्तों को भी याद कीजिए, या उस इंसान को मैसेज भेजिए जिससे बात किए बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि रिश्तों की बैटरी भी चार्ज करनी पड़ती है और उसके लिए वक्त देना पड़ता है। आजकल हम फोन को 20% बैटरी पर देखकर चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारा दिल 20% पर चल रहा होता है तब हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। शाम वही चार्जर है, ये वक्त है रिचार्ज होने का, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, और रिचार्ज होने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं, एक वॉक, एक कप चाय, एक सच्ची बात, एक हंसी, एक गाना, कभी कभी दिन बस इतना ही काफी होता है। तो दोस्तों, आज की शाम को सिर्फ कैलेंडर का एक और दिन मत बनने दीजिए, इसे महसूस कीजिए अपनी सांसों में, अपनी बातों में, अपने रिश्तों में। और जब आज रात आप सोने जाएं, तो ये सोचिए कि आज का दिन चाहे जैसा भी था, मैंने इसे पूरी तरह जिया, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियों में नहीं मिलती, कभी वो शाम की हल्की हवा में मिल जाती है, कभी दोस्तों की हंसी में, कभी घर के खाने की खुशबू में, और कभी किसी गाने की दो पंक्तियों में। इसी खूबसूरत एहसास के साथ चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की शाम की महफिल की आखिरी गीत में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं शाम की महफिल आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे एक स्पेशल ओकेशनल प्रोग्राम व्हाट्सएप अरुणाचल इंटरनेशनल योगा डे पर। आप सुनेंगे एक इंटरव्यू युमदर पोयम के साथ, और हमारा होस्ट रहेगा अरित्र मुखर्जी। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं ये गीत सोच ना सके फिल्म एयरलिफ्ट से।

0: व्हाट्सअप अरुणाचल, नमस्कार। मैं ऑडिट्रो मुखर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर के इस स्पेशल प्रोग्राम में। डेटा की माने तो दुनिया का अबव 60 पॉपुलेशन 2040 में 20% पे पहुंचने वाला है। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस में स्मूथ ट्रांजिशन के लिए चाहिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस। इन दोनों का तालमेल बरकरार रखने के लिए योगा से बेहतर शायद ही कोई विकल्प होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल योगा डे 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हमारे आज के चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं कैसे योगा एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मदद करता है।
1: एजिंग का मतलब सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि एक बेहतर और सक्रिय जीवन जीना है, और इस सफर में योगा आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। उम्र के साथ तनाव, चिंता और अकेलेपन जैसी परेशानियां आने लगती हैं। पर रिसर्च बताती है कि ग्रुप या ऑनलाइन योगा क्लासेस से मूड बेहतर होता है, अकेलेपन से लड़ने की ताकत मिलती है और एजिंग को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। सबसे अच्छी बात, योग बहुत ही लो कॉस्ट और अडेप्टेबल है। अगर चलने फिरने में दिक्कत है तो चेयर योगा या मॉडिफाइड पोज के जरिए इसे आसानी से किया जा सकता है। योग सिर्फ शरीर नहीं दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। ये ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करता है, एंजाइटी को कम करता है और सोशल बॉन्डिंग में सहायता करता है।
0: इसी विषय पे गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है युमतर दोयम, कंसल्टेंट ऑन्को क्लिनिकल डाइटिशियन और ब्रह्मचारी हरिकृष्णा, एडमिनिस्ट्रेटर द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कशन का शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगा। मैम, इंटरनेशनल योगा डे 2026 का थीम इस बार है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मैम, हमें बताइए कि व्हाट डज दिस टर्म हेल्दी एजिंग मीन फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव?
2: सो हेल्दी एजिंग मीन्स के इन अ सिंपल टर्म्स फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, लाइक जो अभी बेसिकली जो बहुत क्रॉनिक डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज जस्ट लाइक डायबिटीज, उसके बाद हाइपरटेंशन एंड देन कैंसर। सो इट बेसिकली मीन्स के लाइक ओल्डर मिथ ये है कि लाइक व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी थिंक लाइक अभी वी जस्ट डोंट हैव टू डू एनीथिंग, रेस्ट ही लेना है एंड देन वी आर प्रोन टू बी लाइक वी आर मोर रेडी टू बी इन लाइक हॉस्पिटल बेड रादर देन लाइक डूइंग समथिंग फॉर आवर ओन हेल्थ लाइक फिजिकल एक्टिविटी। सो हेल्दी एजिंग इज बेसिकली आई वुड जस्ट से कि सिंपल टर्म्स में फ्री फ्रॉम एनी डिजीज।
0: मैम, क्या इसमें एज इज रिलेटेड टू एनी नंबर? कि हम लोग जो सोचते हैं कि 60, अब 60 हो गया तभी हमारा एज हो गया है, वी हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, उसके बाद ही हमें फिजिकल एक्सरसाइज फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और एजिंग इज मोस्टली रिलेटेड टू हाउ योर बॉडीज एज एक्चुअली इज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: सो या, एज इज जस्ट अ नंबर, ये कोट बहुत फेमस कोट है। सो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारा सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी है, जो बहुत ज्यादा योगा से रिलेटेड अपना हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा फिट रहती है। इवन उस शी लुक्स मोर लाइक 20s-30s के बीच में। सो एज इज जस्ट अ नंबर, व्हेन वी टेक केयर ऑफ अवर ओन हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली डाइट रिलेटेड केयर करना स्टार्ट करते हैं, सो वी कैन लाइक प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारा डिजीजेस।
0: इसी पे सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप ये हमें बताइए कि योगा ये कैसे हेल्दी एजिंग में हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि आम आदमी हम जब सोचते हैं कि योगा एक फिजिकल एक्टिविटी है, वो बुढ़ापे में या बढ़ते उम्र के साथ हमें कैसे सहायता कर सकता है?
3: बुढ़ापे के जो इश्यूज आप बताते हैं नॉर्मली जो लोग फेस करते हैं, लोनलीनेस, एंग्जाइटी, थोड़ा सा टेंशन, ये बहुत सब चीजें हैं। इसका ओरिजिन कहाँ पे है आप थोड़ा अगर उसको देखते हैं, इट इज इनसाइड अस, राइट? बट सॉल्यूशंस हम कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। तो योगा क्या करता है, हमारा फोकस जो है शिफ्ट करवाता है कि जहां पे प्रॉब्लम है आप वहां से स्टार्ट कीजिए। तो योगा क्या करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है, एंड हमारा जो ये शरीर है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, राइट? देर आर मल्टीपल सिस्टम्स इन इट, जैसे विजिबल तो आप मसल्स वगैरह देखते हो, बट देन देर इज सर्क्यूलेशन, एंडोक्रिनल, एक्सोक्रिनल, ये सब आता है। योगा इन सब को एड्रेस करता है और सबका प्रॉपर तरीके से कंडीशनिंग करता है, जिससे फिर एजिंग रिलेटेड जो भी है जो इश्यूज उस एज में फेस होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड मैनेजेबल हो जाते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी.
4: राइट मैम, व्हाट आर द कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेस दैट यू फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव सी कि एज बढ़ने के साथ साथ वो ज्यादा देखने को मिलता है?
2: सो लाइफस्टाइल डिजीज में नंबर वन अरुणाचल का तो नंबर वन इज डायबिटीज एंड देन सेकेंड हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर बीपी इश्यू है एंड बोन रिलेटेड डिजीजेस. उसके बाद द फोर्थ वन इज द कैंसर.
4: राइट एंड मैम, हाउ बिग अ रोल कैन योगा और इन फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल एक्सरसाइज प्ले इन कर्बिंग दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस?
2: सो योगा लाइक सबसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल थिंग है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, बट देन यू नीड प्रॉपर डाइट ऑल्सो. लाइफ स्टाइल आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा एंड देन योगा इज नॉट कि आपको बहुत ज्यादा एक इवन आजकल तो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, यूट्यूब वीडियोस है आप देख सकते हैं, बहुत सारा आसनास है. सो आजकल बहुत ज्यादा अप्रोचेबल है योगा. योगा एट होम इज वेरी लाइक बहुत एक्सेसिबल है.
4: राइट सर, आपने अपने पिछले आंसर में एक पॉइंट कहा था कि एंग्जाइटी और लोनलीनेस जो बढ़ती उम्र के साथ साथ एक बहुत कॉमन दो प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है
3: जी.
4: तो योगा जैसे अमूमन हमने देखा है इट्स अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कि एक ग्रुप में आप करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, तो ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ रहे हैं तो यू कैन डू इट विद अ ग्रुप, आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं. तो ये एंग्जाइटी और लोनलीनेस ये जो मेंटल एस्पेक्ट है इस पे भी योगा कैसे हमें मदद करता है उस पे थोड़ा प्रकाश आप डालिए.
3: सो नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है, आप किसी भी कॉमन व्यक्ति को पूछिए व्हाट इज योगा, उनका आंसर रहेगा आसनस कि हमने देखा था कि ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर है, पोज है जो करना पड़ता है. बट योगा जो है एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपका ब्रीदिंग भी आता है, ब्रेथ वर्क भी आता है, आपका मेडिटेशन भी आता है. सो जब ये सब मिल के आते हैं, ये जो एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, जो भी है, बहुत आसानी से इसको एड्रेस किया जा सकता है एंड मैनेज किया जा सकता है.
4: राइट
3: जी
4: मैम, एक कंप्लीट पैकेज सर ने बोला योगा इज लाइक दैट, तो योगा के अलावा एक कंप्लीट पैकेज में गट हेल्थ इज प्रोबेबली इक्वली इंपॉर्टेंट एज फार एज फिजिकल एक्सरसाइज गोज, एंड सिंस यू आर अ डाइटिशियन, तो गट हेल्थ एंड उस गट हेल्थ को मैनेज करने के लिए डाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है?
2: सो या वेरी गुड पॉइंट. गट हेल्थ इज लाइक अभी गट हेल्थ में सबसे ज्यादा मेन रोल हमारा डाइटरी फैक्टर्स ही है. ऑल द

0: जंक फूड्स एंड ऑल, ये सबको पता है, बट देन ये बहुत ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं है कि एंजाइटी स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपको गट का इश्यूज कर सकता है. एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो स्ट्रेस से कॉज होता है.
1: मैम, इसमें जो हाईली क्लिनिकल डिसीजेज है तो उस पे भी क्या इफेक्ट होता है? जैसे हम सोचते हैं कि आज हमारा डाइट हम आज खराब है या कल खराब है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा स्टमक इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, बट क्या जो टर्मिनल इलनेस है उस पे भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकता है इन द वे हाउ वी कंज्यूम, व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग?
0: यस यस एब्सोल्युटली. सो द इनिशियल स्टेज इज लाइक हमारा गैस्ट्राइटिस होगा, एंड देन गैस्ट्राइटिस इज हम लोग ऐसे जस्ट सर्दी बुखार के तरह ट्रीट करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग. गैस्ट्राइटिस इज द इनिशियल स्टेज. उसके बाद धीरे धीरे आपको थोड़ा बॉडी पे चेंजेस नजर आएगा, एंड देन आप द लास्ट स्टेज इज वन ऑफ द वर्स्ट, इन द वर्स्ट केस दैट इज स्टमक कैंसर, विच इज गैस्ट्राइटिस से ही लीड करता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज.
1: जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी बात पे कि आपने जैसे पिछले आंसर में भी बताया कि योगा एक ऐसा एक है कि योगा क्या है, लोग जनरली सोचते हैं कि आसन है, तो एक जैसे आपने बताया कि योगा इज अ कंप्लीट पैकेज, तो उस पैकेज के बारे में और जो अदर एस्पेक्ट्स है, जैसे हम मेंटल एस्पेक्ट है उसका, एज रिलेटेड ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज हो जाए या कोई फिजिकल पेन हो रहा है तभी योगा शुरू करना चाहिए, तो ये आप मैं चाहता हूं कि बताएं हमारे दर्शकों को कि कुछ ना होने पे भी अगर आप योगा करेंगे तो योगा एज अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कितना हेल्पफुल होता है कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए योगा कितना हेल्पफुल है?
2: जी, तो बहुत कम लोग जो है जैसे आपने क्वेश्चन को फ्रेम किया उस हिसाब से सोचते हैं. नॉर्मली योगा को हम ऐसे देखते हैं कि रेमेडियल मेजर, कि अभी कुछ हो गया है तो चलो योगा करते हैं. आप ये एक मिसकंसेप्शन जैसा है, एंड बहुत पॉपुलर मिसकंसेप्शन है दैट योगा नीड्स टू बी स्टार्टेड आफ्टर योर रिटायरमेंट. अब योगा के बेनिफिट्स क्या है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, आप काम रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो, कोई भी सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो. ये सारे एडवांटेजेस 60 के बाद करने का क्या मतलब है? तो ये तो हमें रिक्वायर्ड है हमारे डेली लाइफ में. स्टूडेंट्स नीड इट, वर्किंग प्रोफेशनल्स नीड इट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स या पीपल से इन योर फील्ड, इतना स्ट्रेस है, इतना रनिंग अराउंड है. सो इफ वी डू नॉट यूटिलाइज इट, हु विल? सो द बेस्ट टाइम टू लर्न योगा इज जितना यंग स्टार्ट करे उतना अच्छा है. देखिए, 5 साल के बच्चे को जरूरी नहीं है योगा, राइट? कि वो खुद से योगी है, वो खुद से आसनास करता है. वी डोंट हैव टू टेल द चाइल्ड कि तुम ऐसे करो वैसे करो. बट बिफोर हॉर्मोन्स चेंज, राइट, हॉर्मोनल चेंजेस स्टार्ट होने के पहले 2 साल पहले, जैसे 8-9 साल के उम्र में अगर हम एक बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं योगा में, तो क्या होता है, जब चेंजेस होते हैं बॉडी में एंड माइंड में, द चाइल्ड इज मोर इक्विप्ड टू हैंडल दीज चेंजेस. सो राइट टाइम फॉर योगा इज नाउ. ऐसा कोई एज नहीं है कि 60 के बाद ही स्टार्ट करना है, एंड कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है. राइट
1: सर, आपने एक अच्छा वर्ड यूज किया कि देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, जिसको हम आम भाषा में मिथ भी बोलते हैं योगा को लेकर, और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में जहां पे रील्स ही सबसे ज्यादा पहुंचती है लोगों के पास, उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितना सच है कितना झूठ है. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि योगा को लेकर आपने जो एक्सपीरियंस किया है और क्या क्या कॉमन मिथ्स जो है आपने एक्सपीरियंस किया है जो बिल्कुल ही सच नहीं है, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट करके हमें सही जानकारी अगर दे पाए तो.
2: जी, एक तो मैंने बता दिया ऑलरेडी रिलेटेड टू एज.
1: जी,
2: एक मेरा पर्सनल मैं आपको बता सकता हूँ. सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, राइट? एंड विथ रिलीजन सर्टन टाइम्स क्या होता है, योगा रिलेटेड ऐसे एक टाबू जैसा हो जाता है कि मे बी इट इज पर्टेनिंग टू अ सर्टन रिलीजन, तो उसको फॉलो नहीं करना है, इट इज नॉट बेनिफिशियल. अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे पिज्जा हो या पास्ता हो, ओके, इट ओरिजिनेटेड इन इटली, बट वेन ईटिंग हम ये नहीं सोचते कि ये तो इटली से आया है, जिसने बनाया था पॉसिबली उसका ये बैकग्राउंड था, ये पॉलिटिकल व्यू था, या व्हाटएवर, राइट?

0: सब्स्टिट्यूट क्या है फ्रॉम अ डाइटिशियन पर्सपेक्टिव?
1: पिज्जा बर्गर इसका सब्स्टिट्यूट तो फास्ट फूड, इसका नाम फास्ट फूड इसीलिए है बिकॉज इट इज वेरी एक्सेसिबल. अभी हमको कुछ बनाने का मन नहीं कर, लाइक राइस दाल आलू भाजी तो बहुत सारा कुछ बनाना होता है. सो व्हाट इज द लाइक सबसे एक्सेसिबल क्या रहेगा कि अभी जाके कहीं शॉप पे जाके एक पिज्जा खा लिया देन पेट मतलब स्टमक विल बी फुल. बट देन आफ्टर बहुत मेनी इयर्स लेटर विल बी वेरी लाइक गट के लिए बहुत ज्यादा इश्यू रहेगा. सो रिप्लेसमेंट के लिए वी कैन स्विच टू हेल्दी ईटिंग, लाइक घर पे बना सकते हैं हम लोग. घर पे वी कैन मेक जो रेगुलर रोटी जो हम लोग घर पे बनाते हैं या फिर पूरी. सो पूरी पे हम लोग इवन आई सजेस्ट टू ऑल माई पेशेंट की मैदा को अवॉइड करने के लिए. तो मैदा अगर पूरी बना भी रहे हैं तो फॉर चिल्ड्रेन और देन और एल्डर एल्डरली पीपल और देन द एडल्ट वन. सो सबको आप लोग यू कैन एड मेनी थिंग लाइक बीट रूट एड कर सकते हैं एंड देन वी कैन एड ऑल्सो स्पिनच ऑल्सो एंड देन इवन अरुणाचल पीपल वी लव लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल. इवन वी कैन एड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन वी कैन मॉडिफाई इन मेनी वेज. सो इन बेस्ट वेज वी कैन यूट्यूब पे बहुत सारा आपको रेसिपीज मिल जाएगा. सो वी कैन द बेस्ट थिंग इज मेक ए लिस्ट ऑफ हेल्दी जितना फूड आइटम्स है उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन लुक फॉर कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा घर पे बनाने. दैट विल बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर पिज्जा बर्गर एवरीथिंग.
0: जी डाइट पे बात हम जारी रखेंगे मैम, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन के आसन हैं जो आप रेगुलरली आसानी से अपने घर में कर सकते हैं.
2: क्या आप सुबह उठते ही जॉइंट्स में पेन या स्टिफनेस महसूस करते हैं? ये एजिंग की एक निशानी है. सुबह उठते ही 5 मिनट एंकल रोटेशंस और नेक रिलीजेस के साथ पवन हिमुक्तासन करें. ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती है और स्टिफनेस मिटाती है. हैबिट नंबर 2, सिर्फ 5 मिनट नाड़ी शोधना यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें जो नर्वस सिस्टम को बैलेंस और माइंड को काम करेगा. इसके बाद बॉडी और माइंड को चैलेंज करने के लिए वृक्षासना या ट्री पोज करें जो एंकल्स और कोर को मजबूत बनाकर बैलेंस बेहतर बनाता है. हैबिट नंबर 4 है स्पाइन योगा. फॉरवर्ड बैकवर्ड और ट्विस्टिंग मूवमेंट से अपनी स्पाइन बैकबोन को अलाइन रखें. और आखिर में थकान मिटाने के लिए करें विपरीता करानी या लेग्स अप द वॉल पोज. यह एक आसान इन्वर्शन है जो सर्कुलेशन बढ़ाकर बॉडी को डीपली रिजुविनेट करता है. ये 5 सिंपल हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस देंगी और चोट लगने का खतरा कम करेंगी.
0: जिम जाता हूँ तो मुझे योगा करने की जरूरत नहीं है, तो ये सवाल मेरा पर्सनल भी है और मेरा बहुत सारे लोगों ने मुझसे शो करने से पहले पूछा भी था कि जिम और योगा इन दोनों में अंतर क्या है. अगर मैं एक जिम जा रहा हूं तो क्या मुझे योगा करने की जरूरत है? नहीं है. अगर मैं योगा कर रहा हूं तो क्या जिम की जरूरत है? इन दोनों में फर्क थोड़ा सा आप अगर बताए.
3: जी देखिए, हर एक का अपना महत्वपूर्ण रोल है. जिम अपने जगह बहुत अच्छा है. योगा में जो मैंने कंप्लीट पैकेज का बात किया था वो एक डायमेंशन ऐड हो जाता है. सो जहां जिम में आप यू आर वर्किंग ऑन योर स्पेसिफिक पार्ट, राइट, यू आर वर्किंग ऑन योर मसल्स, योगा में यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर बॉडी, विच अगेन आई सेड इज वेरी कॉम्प्लेक्स. यू आर टेकिंग केयर ऑफ द माइंड, ऑफ द ब्रेथ एंड ऑफ एस्पेक्ट्स जिसका नॉर्मली आपके पास कंट्रोल या एक्सेस नहीं है. जैसे माइंड में ही एक टेंडेंसी आपको बताते हैं माइंड का. अब अगर मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बोलू कि थिंक अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट बट डू नॉट थिंक अबाउट अ मंकी, सबसे पहले क्या होता है? मन में मंकी ही आता है, राइट? तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे? तो योगा एक फाउंडेशन सेट करता है वेर यू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ योर ओन माइंड एंड देन यू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ हाउ टू डील विथ इट. तो एक बहुत फेमस सेइंग है, माइंड आपका सबसे वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है एंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज द माइंड. योगा हेल्प्स यू डू दैट. सो इवन इफ यू आर डूइंग जिमिंग, यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट, कोई जुम्बा कर रहे हैं, यू कैन कॉम्प्लीमेंट योगा विद दैट. तो योगा इज लाइक एन एडिशन इन वॉट एवर यू आर डूइंग. इट डजंट नेगेट एनीथिंग. तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग.
0: जी, कॉम्प्लीमेंट के विषय पे भी मैम आपके पास में आना चाहूंगा. लाइक

0: फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई ईट राइट, आई ईट एट द राइट टाइम, आई ईट व्हाट इज नेसेसरी, आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ जंक. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट, इस पे अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को शेयर कर पाए दैट व्हाट कैन बी अ बैलेंस्ड डाइट इन अ पर्टिकुलर मील. अगर हम अरुणाचल की बात करें, यहाँ पे बॉयल्ड वेजीज कंजम्पशन, मीट कंजम्पशन ज्यादा रहता है, लेकिन ये बैलेंस्ड डाइट जो हम चीज सुनते हैं, अगर मैं डेली योगा कर रहा हूं तो मेरे लिए एक बैलेंस्ड डाइट क्या होगा फॉर माई लंच एंड फॉर माई डिनर?
1: ओके, सो बैलेंस्ड डाइट इज बेसिकली अरुणाचल में, अरुणाचल का पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, तो मेनली राइस रहेगा एंड देन राइस का रिप्लेसमेंट में रोटी भी रहेगा एंड दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूमशन रहेगा. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रोटीन नहीं है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइबर है विच हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन, जिसका वावल का प्रॉब्लम रहता है वो. सो रिलेटेड टू दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आई वॉन्टेड टू एड्रेस कि अरुणाचल में स्पेशली ओल्डर पीपल, बिकॉज दे आर लाइक बहुत पीछे जनरेशन के हैं वो, सो दे बिलीव इन हम लोग को सिर्फ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इज मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, बट न्यूट्रिशियस है इन पॉइंट ऑफ प्रिवेंटिंग दिस कॉन्स्टिपेशन एंड वाइटामिन्स भी है, बट देन देर इज नॉट प्रोटीन विच इज वाई आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज ऑन ईटिंग गुड प्रोटीन सोर्सेस. So coming back to a balanced diet, so rice and then green leafy vegetables. Protein के लिए best sources है दाल. दाल में not only दाल, आप दाल में भी बहुत सारा varieties है. So and then राजमा, चना, मटर, everything. उसके बाद दूसरा ये तो है plant sources में. And then animal sources में है chicken, fish है. एंड देन डेयरी प्रोडक्ट्स, सो डेयरी प्रोडक्ट्स में रहेगा पनीर या फिर कर्ड ले सकते हैं. सो दिस इज इट. एंड देन आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल द ऑडियंस कि प्रोटीन के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत सारा ऐसा चिकन फिश रेगुलर बेसिस में खाना है, स्पेशली रेड मीट. रेड मीट इज लाइक वेरी पॉइजनस अभी लेटर एज में, अभी बहुत सारा में इट विल टर्न टू कैंसर. ये हमारा अरुणाचल वासियों को स्पेशली उनको नहीं रियलाइज होता है, तो उनको ऐसा होता है कि आई नो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज वेरी इजी मेकिंग है, अभी सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना है, तो मीट लिया तो हाँ आज ये बन गया, ये भी एक रीजन है आई नो, बट ये धीरे धीरे चेंज आएगा. हमारा फूड हैबिट्स को चेंज करने में बहुत मदद करेगा. तो रेड मीट में पोर्क हुआ एंड देन बीफ हुआ, तो इन लोग को तो अभी वंस ए मंथ है. इफ यू आर ईटिंग इन डेली बेसिस इट इज लाइक कोलेस्ट्रॉल का इश्यू आएगा, बीपी का इश्यू आएगा एंड देन डायबिटीज का इश्यू आएगा. एंड देन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट जिम, सो जिम में आई वॉन्ट टू से कि to all the people who are going to gym, it's not necessary कि आप लोग इतना protein intake का बहुत ज्यादा consumption हो रहा है. I saw many people eating 7 to 8 eggs a day, which is not healthy. तो protein के लिए it's better to switch to plant sources, जैसे कि दाल हुआ, राजमा हुआ, मटर हुआ. तो just want to say this.
0: ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा मैम ने उठाया आपने, क्योंकि सर से हमने बात किया कि योगा रिलेटेड मिथ्स क्या क्या है, तो ही ट्राइड टू डिबंक. आपने एक डाइट रिलेटेड मिथ भी डिबंक करने की कोशिश की, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन कि इसके अलावा भी और क्या क्या कॉमन जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि डाइट को लेकर मिथ है. जैसे आपने बताया कि जिम जाना है मतलब दिन में 10 अंडे खा रहे लोग बिना सोचे, तो इसके ऐसा भी कुछ और एग्जाम्पल है जो आमतौर पर आपने देखा हो कि लोग इसको हेल्दी फूड के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है, उनका नुकसान कर रहा है.
1: यस यस, हाँ. सो फूड मिथ में लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एड्रेस करती हूँ. नंबर वन तो एग का बता दिया, आई सो पीपल ईटिंग 7-10 एग, ये बंद करना है. एंड देन चिकन भी बहुत सारा कंजम्पशन होता है डेली बेसिस में. सो अभी RDA के हिसाब से दिस इज रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंसेस, वो हमारा इंडिविजुअल के हिसाब से अभी पहले 1.2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट था, अभी 1 ग्राम कर दिया है. सो आई वांट टू एड्रेस कि अभी 1 ग्राम कर दिया है, तो अभी इफ द पर्सन इज 60 किलो, तो 60 केजी से उसको 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है, नॉट मोर देन दैट. सो दैट इज वन मिथ. दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का एड्रेस ऑलरेडी. फिर थर्ड में

0: वॉन्ट टू से कि फ्रूट जूसेस यार. तो हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट्स एडमिट होता है, हमारा जितना भी रिलेटिव्स रहता है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोग लेके जाता है फ्रूट जूस. फ्रूट जूस में रियल जूस, बहुत सारा जूसेस देखा है मार्केट पे. सो आई मतलब फ्रूट जूसेस में ना, इवन इफ यू मेक घर पे भी आप लोग बनाते हो होम मेड जूसेस, एनी एनी फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ये सब इज वेरी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. आप अगर आपको फ्रूट्स खाना है एंड देन फ्रूट्स का वाइटामिन आपको लेना है, इट्स बेटर टू कंज्यूम इन लाइक एज ए होल. ऐसा क्रश कर दिया तो उसमें बस शुगर ही रहेगा, तो विटामिंस भी क्रश हो गया. विटामिन सी तो बहुत इजीली क्रश मतलब डैमेज हो जाता है. तो इसीलिए ये एक मिथ है कि फ्रूट जूसेस आर हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी नहीं है. अगर आप पेशेंट्स को या अपना रिलेटिव्स को मिलने जा रहा है तो प्लीज उसका जगह पे आप लोग फ्रूट्स लेके जा सकते हैं. फ्रूट्स में भी सीजनल फ्रूट्स, ऐसे एप्पल जो हमेशा ऑल ईयर अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं. जो सीजनल फ्रूट्स है अरुणाचल में, जो जो अवेलेबल है वो सब लेके जा.
1: जी थैंक्स अ लॉट मैम, इतने सारा मिथ्स आपने जो डिबंक किया आज. सर मैं आपके पास आना चाहूंगा बैक टू आवर सेंट्रल टॉपिक ऑफ योगा एंड योगा फॉर बेटर हेल्थ एंड हेल्दी एजिंग. तो सर मान लीजिए हमने अभी शुरुआत में इस शो में अभी तक डिस्कस किया कि योगा को स्टार्ट करने का कोई पर्टिकुलर या एप्ट एज नहीं होता, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. लेकिन मान लीजिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया है, मेरी उम्र अभी 55 साल है और मैंने पूरे लाइफ बहुत काम किया है, अभी मुझे जॉइंट पेन, नेक स्टिफनेस, एंग्जाइटी इशू, स्ट्रेस सब कुछ मेरा हाई है और मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे योगा करना है. तो अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं इन सारी परेशानियों से जूझ रहा हूं, तो क्या मुझे योगा अभी फायदा दे सकता है, और अगर दे सकता है तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट शुड आई डू फॉर स्टार्टर्स?
2: जी तो योगा का ये खासियत है कि कोई भी एज में वो इट इज वेरी बेनिफिशियल. तो इवन ये रिग्रेट अगर रहा कि काफी टाइम हो गया अभी करके क्या फायदा है, ये सोच गलत है. एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट योगा. हाउ डू वी स्टार्ट देन? थ्री एस्पेक्ट्स है जो हमें थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा. फर्स्ट वी स्टार्ट एट द बॉडी लेवल. जिसे आपने जो एज कैटेगरी बताया 55-60 ईयर्स, सिंपल रोटेशंस के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं. देखिए शरीर का मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस, हमारे कंधों में और गले में रहता है. इसलिए बोलते हैं कि कंधों पे इतना बोझ है, राइट? इट इज नॉट जस्ट अ सेइंग, इट इज एक्चुअली ट्रू. सो सिंपल नेक रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, जहां पे भी हमारे जॉइंट्स है, थोड़ा सा रोटेशंस के साथ स्टार्ट करने से बहुत अच्छा है. देन यू एड अ फ्यू स्ट्रेचेस जो डुएबल है उस एज में. यू डोंट हैव टू एग्जर्ट योर सेल्फ. जैसे आपने कोई स्पेशल वीडियो देखा, आजकल बहुत सारा ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम पे आसनाज ही है कि आप बहुत डिफिकल्ट टू डू आसनाज देखते हैं, बट आपको वो करने की जरूरत नहीं है. सिंपल अपना जैसे हैंड्स को उठाया, राइट हैंड स्ट्रेच, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच, थोड़ा सा स्पाइन को स्ट्रेच किया. सो स्ट्रेचेस ऐड करना है. एंड फाइनली सम कॉमन आसनाज, राइट? वॉरियर पोज इज अ वेरी गुड आसना. सो आप खड़े होके थोड़ा सा डिफिकल्टी में आप बॉडी को उसमें डालते हैं एंड देन यू रिलैक्स अगेन. सो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. दिस इज वन एस्पेक्ट. ब्रेथ वर्क नीड्स टू बी एडेड. सो थोड़ा सा कूलिंग डाउन प्राणायाम्स करने से बहुत अच्छा है, बिकॉज मन इतना चलता है उस एज में, यू हैव नथिंग टू डू, एंटायर डे योर माइंड इज रनिंग. तो उसको कूल डाउन करने के लिए शरीर को भी कूल डाउन करना पड़ता है. सो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, दीज वेरी सिंपल बैठ के करने वाले प्राणायाम्स कर सकते हैं, राइट? कपल ऑफ प्राणायाम्स आर मोर देन सफिशियंट, 5 to 10 minutes. एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंप्लीट दिस होल थिंग इज मेडिटेशन. तो मेडिटेशन 10 मिनट बैठना ही बैठना है, कुछ भी करके. अब मेडिटेशन का क्या है, हमें लगता है यू हैव टू फोकस ऑन वन पॉइंट. देन वॉट हैपन्स, फोकस हो नहीं रहा तो वी फील कि मेरे से नहीं होगा, तो उसको हम साइड पे रखते हैं. बट मेडिटेशन का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन. तो आपको 10 मिनट कुछ नहीं करना है, बस बैठे बैठे रिलैक्स करना है. नो फोकसिंग एनीवेयर, नथिंग, जस्ट रिलैक्स. इनफैक्ट फोकस इज एन आउटकम ऑफ मेडिटेशन, इट इज नॉट मेडिटेशन. तो 10 मिनट में अभी आप बोलेंगे विचार बहुत आते हैं, थॉट्स बहुत आ रहे हैं, वॉट टू डू? आप उसको लाइक अ मूवी ऑब्जर्व कीजिए, बट यू नीड टू रिलैक्स. सो कोई भी थॉट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आते ही रहेगा. आप बैठ के रिलैक्स करें, मेडिटेट करें. आफ्टर दैट ये तीन चीज करने से जो आपको अच्छा लगेगा दैट इज योगा, दैट इज द बेनिफिट ऑफ योगा.
1: एब्सोल्युटली दैट इज द बेनिफिट ऑफ योगा. एंड योगा एक कंप्लीट पैकेज है जो आपके फिजिकल मेंटल वेलबींग को दोनों का ध्यान रखता है और साथ ही साथ आपके डायट्री एलिमेंट्स को भी एक इम्पॉर्टेंट दिशा देता है. डिस्कशन तो बहुत है, अभी भी बहुत सारे सवाल जवाब हमारे बाकी थे लेकिन समय हमारे पास सीमित है, इसलिए आज का डिस्कशन को यही हमें ना चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा. मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे दो गेस्ट का, आपका कीमती समय और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. जाते जाते आप सभी को एक रिमाइंडर, कोई पूछे ना पूछे डीडी अरुण प्रभा और आकाशवाणी ईटानगर जरूर पूछेगा व्हाट्सएप अरुणाचल. तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए.

दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है। विशाल शेखर की पहली पूरी साउंडट्रैक फिल्म थी वध, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2003 की फिल्म झनकार बीच से। अगर आपको याद हो, उस दौर में बॉलीवुड में टेक्नो और इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स उतने आम नहीं थे, लेकिन विशाल शेखर ने नए साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और तू आशिकी है और सुनो ना जैसे गीतों ने लोगों का दिल जीत लिया। इसी साउंडट्रैक के लिए उन्हें फिल्म फेयर का आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट भी मिला। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि बॉलीवुड को एक नए म्यूजिक डुओ के आने की दस्तक थी। आइए सुनते हैं उनके शुरुआती दौर का एक खूबसूरत गाना। दोस्तों, हम सुनेंगे बचना ए हसीनों से। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बचना ए हसीनों।

दोस्तों 2005 विशाल शेखर के करियर का टर्निंग पॉइंट था। एक ही साल में तीन बड़े साउंड ट्रैक्स आए, 10, सलाम नमस्ते और ब्लफ मास्टर। 10 बहाने ने यूथ एंथम का दर्जा हासिल किया। आज भी पार्टी प्लेलिस्ट और रोड ट्रिप्स में ये गाना जरूर सुनाई देता है। इसी दौर में विशाल शेखर ने ये भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ मेलोडी ही नहीं बल्कि एनर्जी और एटीट्यूड भी कंपोज कर सकते हैं। और फिर आया एक ऐसा गीत जिसने पूरे दिन को देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। 2007 और 2008 विशाल शेखर के लिए गोल्डन ईयर्स साबित हुए। ओम शांति ओम में उन्होंने रेट्रो और मॉडर्न म्यूजिक का कमाल का मेल किया। गीत जैसे मैं अगर कहूं की मिठास, दर्द डिस्को की एनर्जी और आंखों में तेरी का रोमांस, हर गाना अलग था और हर गाना हिट था। इसके बाद बचना ए हसीनों में खुदा जाने और दोस्ताना में देसी गर्ल ने चार्ट बस्टर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ली। ये वो दौर था जब विशाल शेखर बॉलीवुड के लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके थे। दोस्तों विशाल शेखर की एक खास बात यह है कि जितने अच्छे वो डांस नंबर्स बनाते हैं उतनी ही खूबसूरती से रोमांटिक मेलोडीज भी कंपोज करते हैं। गीत जैसे तुझे भुला दिया, बिन तेरे, बहारा, आसपास खुदा, इश्क वाला लव, ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की यादें हैं। कॉलेज डेज, पहला प्यार या फिर दिल टूटने के बाद की तन्हा रातें, हर एहसास के लिए विशाल शेखर के पास एक गीत है। वैसे दोस्तों इस आज के कलाकार के प्रोग्राम में विशाल शेखर के तो डिस्कोग्राफी में लिस्ट भर भर के है, लेकिन हम वही गीत सुना रहे हैं जो उनकी खुद की आवाज में है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म वार से विशाल और शेखर की आवाज में जय जय शिव शंकर।

विशाल शेखर ने बॉलीवुड म्यूजिक को ग्लोबल टच भी दिया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट एकॉन के साथ ठमक चल्लो आज भी एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन माना जाता है। ब्रिटिश बैंड द वैम्स के साथ उन्होंने बेलिया पर काम किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, रॉक, हिप हॉप, सूफी और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन को बॉलीवुड के साथ मिलकर एक नई पहचान दी। शायद इसी वजह से उनके गाने हर जनरेशन को कनेक्ट करते हैं। अगर हम विशाल शेखर की करियर की बात करें तो कुछ बैनर्स के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत खास रही है, जैसे कि यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने कई मेमोरेबल साउंडट्रैक्स दिए, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, सुल्तान, बेफिक्रे, टाइगर जिंदा है, वार, पठान और फाइटर, दिल दिया गल्ला, नशे सी चढ़ गई, घुंघरू और झूमे जो पठान जैसे गीत आज भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोगों की पसंद है। ये उनकी कंसिस्टेंसी का सबूत है कि 2003 में शुरू हुआ सफर 2020 यानी आज तक में भी उतना ही रेलेवेंट है। दोस्तों, विशाल शेखर की कहानी हमें ये सिखाती है कि म्यूजिक सिर्फ सुरों का संगम नहीं बल्कि नए आइडियाज और हिम्मत का नाम भी है। झनकार बीट से पठान तक, टेक्नो से रोमांस तक, रॉक से सूफी तक, विशाल शेखर ने हर दौर को अपनी धुनों से यादगार बनाया है। आज के कलाकार में आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं हूं आपकी आरजे साथी मंच। दोस्तों, जाते जाते आपको एक और बेहतरीन सा गीत सुनाना चाहते हैं विशाल शेखर की। हम सुनेंगे जाने क्यों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम निशी भाषा में समाचार। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां बात करते हैं हम दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निजी श्रोताओं का कार्यक्रम निजी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और वक्त है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के कार्यक्रम का। दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक बहुत ही अंडररेटेड, बहुत ही कम सुना गया फिल्म इश्केरिया का, इश्केरिया द मैड साइड ऑफ लव। दोस्तों इस फिल्म की डायरेक्टर है प्रेरणा वधावन। आज हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ इस फिल्म का पूरा म्यूजिकल जर्नी। हम सुनेंगे बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रोक टोक के इस फिल्म का म्यूजिकल रिले। तो आशा करते हैं कि आपको ये रिले पसंद आएगा। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

0: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: दोस्तों इसी के साथ यही समाप्त होता है फिल्म इश्केरिया के गीतों का हमारा खास नॉनस्टॉप म्यूजिक रिले। उम्मीद है कि प्यार जज्बात और खूबसूरत धुनों से सजे इन गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके सफर को और भी हसीन बनाया होगा। इश्केरिया के इन मधुर गीतों ने हमें याद दिलाया कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिंदगी को नए रंगों से भर देने वाली एक खूबसूरत दास्तां है। आशा है कि आपने इस संगीत यात्रा का भरपूर आनंद लिया। दोस्तों चलिए हमारे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में आपको एक

और गीत सुनाते हैं फिल्म संजू से, सुनते हैं कर हर मैदान फतेह, सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की दमदार आवाज में। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस गीत के तुरंत बाद आप सुनेंगे अपना गीत का हमारा कार्यक्रम, जहाँ हम सुनेंगे हमारे प्रदेश अरुणाचल के डिफरेंट डायलेक्ट में कुछ गीत। चलिए सुनते हैं कर हर मैदान फतेह। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

नमस्कार, अरुण FM 103.1 MHz सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूँ आपके रेडियो साथी गैर अत। आज का अपना गीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंगफो गीत से। इस गीत को गाया है जमैका खासा ने।

अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियाँ जैसे नीशी, तागिन, अपतनिक, गालो आदि स्वयं को सृष्टि का पहला मानव अबोतानी के वंशज मानते हैं। उसी तरह हर समुदाय के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है और सभी के स्रोत अलग अलग भी है, पर एक समानता है सभी जाति या समुदाय में और वो है उनकी परंपरा या संस्कृति का स्रोत। जी हाँ, हम आज जो भी है और जिस भी परंपरा के साथ है उसका स्रोत तो हमारे पूर्वज ही है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और सदियों से चले आ रहे हमारे अमूल्य संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों पर सुनते हैं अगला गीत नीशी भाषा में बिजनू नाबम की आवाज़ में।

कोकोन तिखक की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो अब तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बारिश के बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। जी हाँ, बारिश हर एक इंसान में अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। जैसे जवानी बारिश में भीगना पसंद करते हैं, सूखे से बचने के लिए किसान बारिश के बूंदों को अमृत मानते हैं, मगर यही बारिश पहाड़ों में भूस्खलन पैदा कर हर तरह से लोगों को परेशान भी करती है। फिर वही बारिश में घर के अंदर बैठकर चाय की चुस्की लेना या फिर कंबल से लिपटकर सोने का भी एक अलग ही आनंद है। तो चलिए श्रोता, इसी बात पर क्यों ना हम बारिश पर एक गीत सुने। मोगेदो जी की आवाज में लीजिए पेश है एक आदि गीत।

आप सुन रहे थे नुक्ते गीत तावांग लोवांग की आवाज में। प्यार मोहब्बत में किसी के ओहदे, जात पात, रूप रंग नहीं देखा जाता, और अगर कहीं पर भी ये बीच में आ जाए तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत होती है जो महसूस कर सके। कहते हैं ना कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, सिर्फ तुमसे, तुम्हें तुम्हारे ही रूप में प्यार करे, और अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करता है तो वो प्यार नहीं, सौदा है। श्रोता मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना। चलिए अपना गीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गालो गीत रेरिक कार्लो दिग्बाक और मार्तो कामदा की आवाज में।

0: तो श्रोताओं, इसी गालो गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम श्रोता मित्रों को पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आप सभी श्रोताओं से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अपना गीत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब आप सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज का हमारा खास कार्यक्रम, तो बने रहिए हमारे साथ।
2: Whether you are a long
3: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते
2: Welcome back to Western Melodies on Akashwani Itanagar. I'm your host Coco, and this is day 4 of our Aussie Offspring tribute. Today's playlist is all about those big, bold, crowd-shaking anthems. These are the songs that made Aussie a legend on stage, full of power, energy, and unforgettable hooks. Whether you are a long-time fan or just getting into rock, this list will shake your soul. Crazy Train is one of Aussie's most famous song. It talks about how the world seemed to be falling apart, war, fear, and hate, and how we all feel like passenger on a runaway train. But there's also hope in the message. Maybe we can learn to love and change things.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के किसी कोने में छुप कर बैठ जाती है, और जब कोई पुराना गीत बजता है तो वो फिर से मुस्कुराने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। ये वो महफिल है जहां वक्त की गर्द में छुपे अनमोल नगमे फिर से अपनी धुनों के साथ लौट आते हैं। वो गीत जो कभी रेडियो की पहचान हुआ करते थे, वो सुर जो कभी दिलों की जुबान हुआ करते थे, और वो अल्फाज जो आज भी उतने ही ताजा महसूस होते हैं जितने अपने दौर में थे। आने वाले कुछ पलों में हम मिलकर खोलेंगे यादों की वो किताब जिसके हर पन्ने पर लिखा है एक गीत, एक कहानी और एक एहसास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रहा है सुरों, यादों और मधुर स्मृतियों का सफर भूले बिसरे गीत। दोस्तों, भूले बिसरे गीत में आज पहला जो मैं गीत आपको सुनाने जा रही हूँ वो है फिल्म कश्मीर की कली से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मेमोरेबल आवाज ने। दोस्तों, चलिए सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली से दीवाना हुआ बादल।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत का हमारा ये खास कार्यक्रम। पुराने गीत पुरानी किताबों की तरह होते हैं, जितनी बार खोलिए हर बार एक नया एहसास दे जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं अगला गीत भूले बिसरे गीत के इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में। फिल्म चितचोर से केजे येसुदास की आवाज में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। दोस्तों, इस गीत के निर्देशक है रविंद्र जैन और वहीं पे गीत के बोल लिखे हैं खुद रविंद्र जैन ने ही। चलिए सुनते हैं अमोल पालेकर और जरीना वहाब की फिल्म चितचोर से ये प्यारा सा गीत।

किसी का पहला इंतजार और किसी की आखिरी मुलाकात। दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ के, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं फिलहाल हमारा खास कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। चलिए, भूले बिसरे गीत के इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अगला गीत, फिल्म पेइंग गेस्ट से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में, छोड़ दो आंचल।

0: और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के तीसरे और अंतिम ट्रांसमिशन के आखिरी पड़ाव तक। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना, अब कुछ ही पल पहले तो हमने शाम की शुरुआत की थी और देखिए रात धीरे धीरे अपनी चादर ओढ़ने लगी है। अब मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बिंदुंग दिन दोमांच, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। स्टूडियो की लाइट्स अब धीरे धीरे बंद होने को है और ये सफर यही के लिए थोड़ा रुकता है। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, आप जहां भी हैं, घर की राह पर, अपनों के बीच या अपनी ही तन्हाई में, बस इतना याद रखें कि हर रात एक नए सवेरे का पैगाम लेकर आता है। आज की थकान को आराम दीजिए, अपने ख्यालों को थोड़ा हल्का कीजिए और एक गहरी सांस के साथ दिन को अलविदा कहिए। कल एक नया दिन होगा, नई उम्मीद होंगी, नए मौके होंगे और शायद कुछ नए खुशनुमा पल भी। मैं दिल से आप सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ, कहती हूँ। अच्छी नींद लीजिए, मीठा सपना देखिए और कल फिर दोस्तों नए जज्बात के साथ, नए जज्बे के साथ, नए सफर के साथ, वही अपनेपन के एहसास के साथ फिर से नए दिन की शुरुआत कीजिए। दोस्तों वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैरित एवं तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं आपकी दोस्त और होस्ट बिंदुंग बिंदु मांझ। दोस्तों अभी आकाशवाणी का साथ आपके साथ खत्म नहीं हुआ, कुछ देर में आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले FM गोल्ड के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1 लाख रुपए के कुल बजट के परिवय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
3: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक ऐसा स्कीम सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया, अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
2: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
3: 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
2: बिल्कुल।
3: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख तक रुपए तक के लिए जो है सो टैक्स फ्री
2: किया था। बिल्कुल।
3: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती है कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
2: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
2: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
4: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है उन्हें हायर करिए।
2: बिल्कुल।
4: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज अ फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉर्पोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉई 6 महीने में, उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी, तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए, उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
2: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार के तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा, यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
3: हाँ। अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के, 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है, दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं। अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो है और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो दो और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
2: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए इसके बारे में भी बताएं।
5: धन्यवाद, मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ IntelliDB एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर, मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द EPFO एंड द EM ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो आई बीइंग एन एम्प्लॉयर आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
2: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
5: जी जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर दी एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली

0: encourages companies to create more jobs, and it encourages young professional to enter into the formal workforce with confidence. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है, तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है। इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउस होल्ड एंड एवरी हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं, लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं बिल्कुल, जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
1: बिल्कुल। तो
2: ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे अभिभावक को।
1: बिल्कुल
2: जी
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत
2: जी
1: का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े, और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by

0: technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
0: भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूवेस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें स्थान पर रहा। यह भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों को एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट कर दिया। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों की उड़ानें रोक दी गई। मीनाक्षी हुड्डा चीन के विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नातालिया कुचेस्क्वा को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुके हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the VivaTech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
0: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain

0: a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
0: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed national roadmap to strengthen cooperative banking, organic products and cooperative exports. During the review of major cooperative banking initiatives, Mr. Shah took stock of the progress of various measures being undertaken to strengthen the cooperative banking sector through technology adoption, improved governance, cyber security, digital payments, common service platforms, and enhanced service delivery. Minister of Corporate Affairs said in a statement that detailed discussions were held on the proposed Cooperative Bank of India and its role in supporting the cooperative banking sector in the coming years. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for the NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, Minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. Mr. Pradhan said officers designated by the ministry will be deployed across states to coordinate examination-related activities and report to a central command center headed by the Director General of the National Testing Agency. The National Testing Agency, NTA, has released a message encouraging students to stay calm and trust their preparation with the NEET UG 2026 examination just 3 days away. The agency said that candidates have worked hard throughout the year and should now focus on resting well and giving their best in the examination. The testing agency also assured students that strong security arrangements have been made to ensure a safe, fair and transparent examination. Education Ministry today said that 52 Indian institutions are featured in the QS World University Rankings 2027. IIT Delhi remains India's highest ranked institution at 118th globally, while IIT Delhi, IIT Bombay and IIT Madras are among the world's top 200 universities. Education Minister Dharmendra Pradhan expressed happiness that India's global academic footprint continues to expand. Iranian President Masoud Pezeshkian has described the newly signed Memorandum of Understanding between Iran and the United States as a historic document and a message from a strong Iran. In a social media post, he said peace can only be achieved through mutual respect and reaffirmed Iran's commitment to global peace while preserving its dignity, independence and regional cooperation. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्रौद्योगिकी से प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे पेरिस विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस में मॉस्को के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया और हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराया। शनिवार को सेमीफाइनल में उसका सामना चिली से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्त समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
0: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
2: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया है जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
0: बड़े निवेश हो रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट बिल्डर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है।
2: श्री मोदी ने आज पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गई हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि मॉस्को पर हुआ यह हमला साल के सबसे बड़े हमलों में से एक था।

0: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। ये निर्णय प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट द्वारा लिया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूहों में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी, जहां उसने सीमा से 10 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर रखा है। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी है। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल के लिए दक्षिणी लेबनान में एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसराइली प्रधानमंत्री पहले भी दक्षिणी लेबनान से पीछे न हटने की बात कहते रहे हैं। मध्य पूर्व ईस्ट में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते में लेबनान में भी युद्ध समाप्त करने की बात शामिल है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पिनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी से प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। पेरिस विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत में तेजी से हो रहे डिजिटल बदलाव में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस में मॉस्को के तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it is democratized, highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. UAE restricts social media for children aged under 15. And in hockey, India beat Uruguay in FIH Women's Nations Cup in New Zealand to face Chile in semifinals on Saturday. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it is democratized. Mr. Modi urged the global innovators to work with India and deliver for all.
3: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI Country Partner